0: सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर 800-2-471234 पर संपर्क कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमूज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरिज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अन्य हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों से निपटने को लेकर अमेरिका जल्द फैसला लेगा। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras yesterday. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research. Earlier in the day, Mr. Modi inaugurated the Ponthamalli Vaddapalani stretch of Phase 2 of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. Mr. Modi also attended Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garodia Hindu Vidyalaya in Chennai. Addressing the students, the Prime Minister highlighted India's manufacturing growth and said the sector's expansion had created direct and indirect employment opportunities for the young people.
2: Aaj component se technology aur finished products ka har rajya mein kendra sarkar product chain ko majboot kar rahi hai aur inhi koshishon ka parinam hai aaj hum duniya ke second largest mobile manufacturer hai. 2014 se ab tak hamare electronics export 11 times bade hain, hamare defense export 50 टाइम्स बड़े हैं और हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है।
1: The Supreme Court directed authorities to ensure that people gathering peacefully are not illegally detained and that the free movement of people is allowed subject to traffic regulations. It also called for a review of barricading arrangements in Delhi and directed the centre to ensure that metro services operate according to their normal schedule and that internet services remain uninterrupted subject to law and order requirements. It further directed that lawyers must not be obstructed from discharging their professional duties, issuing notice to the centre on a plea seeking initiation of contempt proceedings against the authorities over alleged violations of its directions. The Supreme Court said it would hear all parties and ensure that no inconvenience was caused. Delhi government is set to launch the Durga Driving Upliftment and Rozgar for Women and Transgender e-Auto scheme to promote safe and sustainable self-employment for women and transgender persons. The government has informed that the scheme will facilitate

0: ఉదయ తరంగిణి కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం ఇప్పుడు సమయం 8 గంటలు కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో సమాచార్ ప్రభాత్ ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే వింటారు.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కి సాథ్ మై ఫర్హత్ నాజ్. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम. दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी. सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हुती हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत. जिबूती तट के पास एक नाव पलटने से 141 लोगों की मौत. और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है. चेन्नई में जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं.
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा. टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस.
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की. श्री मोदी,
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखें. बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी. मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा.
1: श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी बल दिया. उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है. प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया. श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक नवाचार और सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर युवा एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं. दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है. दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है. योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे. इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए होंगे. एक रिपोर्ट.
3: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे. दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी. दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी. यह जांच प्रत्येक हफ्ते की जाएगी. इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे. सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं. जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है. सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है. समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं. आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेरा युवा भारत मेरा भारत पहल के जरिए

0: विजन को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
1: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, भारत सरकार की एक युवा केंद्रित पहल है जिसे 31 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा युवा भारत संगठन 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
2: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
1: छत्तीसगढ़ में माय भारत की गतिविधियों ने युवा शक्ति की व्यापक सहभागिता को नई दिशा दी है। माय भारत संगठन के छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि इस संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं।
3: छत्तीसगढ़ में भी माय भारत बहुत ही वृहद स्तर पे कार्य कर रहा है। हमारा आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का युवा राष्ट्रीय पटल पे अपना परचम लहरा रहा है। वहीं ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से क्रॉस कल्चरल लर्निंग हो रही है, जिसमें भारत के कोने कोने में ट्राइबल क्षेत्र के हमारे युवा जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं।
1: मेरा युवा भारत संगठन का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और नागरिक भावना विकसित करना तथा उन्हें विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। मेरा युवा भारत युवाओं को अवसर, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों की सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। पूर्वी सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए हैं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमरीका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री विस स्ट्रीटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय नागरिक के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 800-2-47-1234। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है, हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल

0: प्रभाव से लागू हो गया है। इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार नाव में 305 लोग सवार थे।
1: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथियोपिया के नागरिक हैं। उन्हें उबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेब जलडबरू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 01123314 01 01 23 7 1 7 1 7। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सके। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
3: क्या हो गया ऐसा?
2: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
3: ये कमाल कैसे हो गया?
2: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
3: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
2: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को भारत में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाने का संदेश सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, भारत के युवाओं के पास दुनिया का भविष्य तय करने की क्षमता। लोकशक्ति की खबर है, युवाओं से प्रधानमंत्री की अपील, बड़े सपने देखें, निडर बनकर नए विचारों पर काम करें। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से फिर तबाही। उत्तरी गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़, 5 लोग लापता, 45 से ज्यादा मकान और पुल बहे। हिंदुस्तान की खबर है, दैनिक जागरण ने भी विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें साझा की हैं। पत्र लिखता है, 2 पनबिजली परियोजनाओं को भी बाढ़ से नुकसान, 50 लोग बचाए गए। नवरात्रि के पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्त पहुंचे पावागढ़। गुजरात में महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की तस्वीरें दैनिक भास्कर ने दी है। 100 की उम्र में भी अदालत में पैरवी, केरल के वकील मेनन कभी नहीं होना चाहते रिटायर, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज नाम। वकालत के लिए 8 दशक से कायम जुनून, राजस्थान पत्रिका ने प्रेरणा शीर्षक से ये खबर दी है। YouTube पर समय बिताने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 4000 लोगों पर कराया गया सर्वे।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 25वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: श्रोताओं, आप जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला सुन रहे हैं। आज चर्चा का विषय है आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर और आज हमारे साथ दो आर्थिक विश्लेषक प्रोग्राम में शामिल हैं, शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। शुभमोय, अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में।
2: बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए।
3: धन्यवाद सोनू जी।
1: अनिल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो 12 वर्ष गए हैं, इसमें जिस तरह का आर्थिक सुधार हुआ है, खासकर करों की अगर हम बात करें, जो अप्रत्यक्ष करों में जिस तरह के कहें कि रेवोल्यूशनरी एक बदलाव आया है, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में आया, उसे आप कितना मील का पत्थर मानते हैं?
3: हमें अगर इसको समझना है, जो सुधार आर्थिक व्यवस्था में किया है सरकार ने, तो आपको 1991 जाना पड़ेगा, जबकि जो हमने रिफॉर्म्स, देश ने रिफॉर्म्स अंडरटेक किए उस वक्त, तो वो था, उसका मुद्दा था कि भारत सरकार क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बड़ा इसमें जो एग्जांपल था वो था डीलाइसेंसिंग, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एग्जिट करना था काफी सेक्टर से। अब आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, जो पिछले 12 साल में जो किए हैं, ये सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें है कि ये नया जनरेशन रिफॉर्म्स जो है, इन्होंने सरकार का फंक्शनिंग ही बदल दिया। तो पहला था कि सरकार क्या करेगा, अब सरकार कैसे फंक्शन करेगा, वो ही है फंडामेंटल डिफरेंस। तो उसमें जो जीएसटी है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसका, कि ये एक टैक्स था जीएसटी, जब मतलब 2001 से इस पे चर्चा चल रहा है, उससे पहले से, लेकिन किसी सरकार ने इसको कभी इम्प्लीमेंट करने का मतलब राजनीतिक साहस नहीं दिखाया और एक राजनीतिक कंसेंसस नहीं जुटाया। इसमें अरुण जेटली जी को मतलब याद करना चाहिए, वो स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उन्होंने एक इसको एक एंकर किया, एक लीडरशिप किया। और इस टैक्स में जो सबसे बड़ा मतलब जो एक लिसनर जो समझ सकता है बड़ी आसानी से, ये इन्होंने देश को एक आर्थिक लेवल पे यूनिफाई कर दिया, एक इकोनॉमिक एंटिटी यूनिटी बना दिया। पहले था देश में, क्योंकि अलग अलग कर के व्यवस्था थे, तो हर स्टेट का एक अलग होता था, तो 38 सॉवरेन टेरिटरी से सामानों को जाना पड़ता था। आप सोचिए कितना फ्रिक्शन होता था, कितना इनएफिशिएंसी होता था लॉजिस्टिक्स, मतलब आप तमाम चीजों में देखते हैं अड़चन कैसे। तो इन्होंने 17 मेजर सेंट्रल और स्टेट टैक्स और 13 सेस को एक करके जीएसटी बनाया। तो ये मतलब देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, दोनों को अगर मिलाएं, और इसका अभी हमें फल साफ नजर आ रहा है। अब जीएसटी रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, फॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, हर तरीके से ट्रांसपेरेंसी आ रहा है सिस्टम में। तो ये जीएसटी जो है, भारत का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म है पोस्ट इंडिपेंडेंस।
1: जी शुभमय, आपके पास आते हैं और इस पर ही आपकी भी हम प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही कहें कि क्रांतिकारी रिफॉर्म है। जैसा अनिल ने बताया कि नेशनल मार्केट बनी है, फॉर्मलाइज हुई है इकोनॉमी, आप बताएं कि जीएसटी क्यों आपके अनुसार, एज एन एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है इतने सालों से लंबित क्यों था, और अब जो जिस तरह से इसको उठाया गया और शुरू में जिस तरह की कुछ कहें कि एक भावना थी कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कैसे आप देखते हैं इसकी जर्नी को?
2: मैं काफी गौर से सुन रहा था अनिल जी के काफी भावनापूर्ण जो विचार थे
1: जी।
2: और मैं उससे कहीं बहुत बहुत तरीके से मैं उससे सहमत हूँ। जीएसटी अनिल जी जो बता रहे थे, उसी कड़ी में अगर चलते हुए हम देखें, तो भारत में 2014 से चलते हुए अभी तक की जो श्रृंखला है, उसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो सुधार का कार्यक्रम हुआ है वो है कैपिटल, लेबर, लैंड और कैपिटल, इन तीनों में अगर हम बांटे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इनमें कैपिटल में सबसे ज्यादा सुधार की मात्रा आई है। और ये इसीलिए

0: इसमें अगर हम देखें जीएसटी को, तो जीएसटी अकेला ही नहीं है, जीएसटी के साथ अगर
1: जी
0: आप एक और बहुत जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण बदलाव जो लाया गया वो है बैंक्रप्सी बिल, इंडियन इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ बैंक्रप्सी इन इंडिया।
1: जी
0: ये बहुत बड़ा एक बदलाव था, एक तरफ कैपिटल तैयार करना, दूसरी तरफ कैपिटल जो बदलाव आएगा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, ये दोनों मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण पदक्षेप थे। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ कि सरकार लोगों के पास जो सीमित कैपिटल अवेलेबल है, संसाधन अवेलेबल है, वो मुआयना कर रहे थे। वो चीज पहले संभव नहीं था। अभी क्या हुआ कि जीएसटी और आईबीबीआई दोनों एक साथ में, एक तरफ तो लोगों के लिए सुविधा हो गया कि भाई हम अगर हमारी कोई बिजनेस चलते हुए बिजनेस में कोई अड़चने आ गई, कोई बिजनेस को बंद करने की जरूरत पड़ी, तो वो एक सिर्फ रोजमर्रा का इंपेयरमेंट ऑफ कैपिटल के हिसाब से देखा जाएगा और उससे मैं जल्दी से उससे निपट के मैं आगे का प्रक्रिया शुरू कर सकता हूँ। और आप देखें स्टार्टअप्स की हमारी इतनी जो तादाद बनी है वो इसी भरोसे पे बनी है कि स्टार्टअप में अगर चलते हुए किसी जगह पे स्टार्टअप नहीं चला, और होता ही है,
1: जी
0: तो वो अनंक लिक्विडेशन वगैरह में उनको कोई अड़चने नहीं आता है। ये बहुत बड़ा
1: जी
0: मील का पत्थर है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में अगर हम जीएसटी की बात करें तो वो उसी श्रृंखला में कि टैक्स स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही सरल सुविधाजनक सिस्टम बन गया है। भारत में अगर हम बहुत सारे जो इसके बाद के जो बदलाव आए हैं वो बदलाव इन दोनों से जुड़े हुए हैं कि इन दोनों को एक बेस बनाकर फिर आगे लोगों को भरोसा आया है, रुचि आया है कि भाई वो कैपिटल लेकर कोई नया बिजनेस, कोई नई संभावनाओं के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं।
1: जी
0: जहां तक आपके सवाल थे कि ये क्यों नहीं बना का सबसे बड़ा चीज था मंशा, और उसका वजह यह है कि हम जीएसटी किस लिए ला रहे थे। जीएसटी एक कड़ी में है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कड़ी के अंतर्गत होकर आया और तभी जाके जीएसटी बना। 2017 में ये जीएसटी का प्रक्रिया शुरू हुआ, और जैसे आप देखें कि सालों साल चलते हुए वो जीएसटी एक एक करके उसमें जो अड़चने थे वो सिंप्लीफाई किए गए, तो उसमें भी जैसे हर साल में जो मीटिंग होता है, और अगर वो जो मीटिंग शुरुआत में हुए थे कई सारे मीटिंग्स करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि
1: हाँ
0: बहुत सारे ऐसे चीजें थे, चुनिंदा सवाले थे, जिनको हल करना सारे राज्यों को मिलके और केंद्र के साथ मिलके तो उसका निपटाना जरूरी था। तो इसलिए ये किसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन मान सकते हैं।
1: जी,
0: जी
1: डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स एक ऐसा कदम रहा जिसके बारे में 1 दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।
2: हम देख रहे हैं हर महीने जब जीएसटी कलेक्शन की फिगर्स आती हैं तो बहुत रोबस्ट आती हैं, उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है। सो आपको लगता है कि अब जैसा आप कह रहे हैं कि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है सरकार का, तो लोग टैक्स इवेजन से भी अब बच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा उसमें टैक्सेस पे करने में वो अपने आप को एक तरह से कह रहे हैं कोऑपरेशन का एक भावना से टैक्स सिस्टम में शामिल हो रहे हैं?
3: बिल्कुल सोनू, आपने सही मुद्दा पकड़ा है। मैं आपको भारत के आर्थिक इतिहास में बहुत साल पहले ले जाता हूँ। 1960 1970 में इनकम टैक्स जो होता था 90% के ऊपर होता था, आई थिंक 97% होता था। तो आप खुद ही सोचिए, जो इंसेंटिव था टैक्स इवेजन था, टैक्स अवॉइडेंस नहीं था। उसमें दो, ये दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। इवेजन में मतलब आप टैक्स पे करना नहीं चाहते, आप छुपा के आप इनकम छुपाते हो। अब जीएसटी जब आया ना, तो आपको जब टैक्स क्रेडिट मिला, अब जीएसटी का एक्चुअली समझना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का बेसिक पॉइंट क्या है। ये जीएसटी पहले जो होते थे इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज वगैरह, वो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे था। अब जो है पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे टैक्स लगता है, तो मतलब उसके साथ में जो भी टैक्स पे करता रहेगा रास्ते में उनको क्रेडिट मिलेगा,
1: जी
3: तो वो क्रेडिट आपके खर्चे से कम होगा, तो आपका उतना मार्जिन रहेगा, राइट? जो पहले होता था वो टैक्स बढ़ते जाता था, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, जो कंज्यूमर लेवल पे फाइनली आता था बहुत ही इम्पैक्ट ज्यादा होता था। तो एक तो टैक्स का इंसिडेंस और इम्पैक्ट कम हुआ, दूसरा क्योंकि आपने टैक्स क्रेडिट देना शुरू किया तो कंपनीज को इंसेंटिव रहा कि जो इवन छोटे मध्यम वर्ग एमएसएमई, आपने जो आंकड़ा दिखाया ना 60 लाख से 1,70,000 करोड़, तो ये इसमें ज्यादातर एमएसएमई है। तो इनका भारत में कुछ आई थिंक 65,000 कुछ एमएसएमई है, मेरे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो इनकी जो रजिस्ट्री हुई है ना, इनके कारण पड़ा है, तो इनकी इंसेंटिव रही। पहले ये अवॉइड करते थे सिस्टम में आने से, कैश का जो ट्रांजैक्शन करते थे, तो आपको याद है नोटबंदी में जो

0: हुआ था 2016 में, तो उसका मुद्दा यही था कि इसके कारण ब्लैक मनी जनरेट होता है। तो इसके जो फायदे हैं ना, आपने ट्रांसपेरेंट रिजीम बनाया, फिर आपने रेट सेट कर दिया, जो रेगुलेटरी ओवररीच है, पहले एक्साइज इंस्पेक्टर आपके फैक्ट्री के दरवाजे पे पहुंच जाते थे, आज उनको कोई कारण बताना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा अगर वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन जो इम्पैक्ट, जो एक जो आपने बोला कंप्लायंस, वो एक वॉलंटरी कंप्लायंस रहा है, मतलब उद्योगों में एक इंसेंटिव है कि हम टैक्स कंप्लायंट रहे, हमें कम झमेले हैं, सारा ऑर्गेनाइज्ड है। और इसका एक सब टेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये जो रिसीट होते हैं ना, ये पेमेंट रिसीट्स वगैरह जो कैश रिसीवेबल्स होते हैं कंपनी के बुक्स पे, आजकल जो फिनटेक्स आ रहे हैं, जो
1: जी
0: अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो आरबीआई ने इसको और लिबरलाइज किया है क्रेडिट पॉलिसी में, इस अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में आपके जो ये रिसीवेबल्स हैं, इसके बल पर आपको क्रेडिट मिलेगा, आपको
1: जी
0: कोलैटरल मतलब घर फैक्ट्री गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी लोन के लिए।
1: जी
0: तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबटेक्स है। तो जीएसटी जब हम देखते हैं ना, एक फाइनल पॉइंट ही नहीं देखना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, इसके जो फायदे हैं अनेकों फायदे हैं।
1: शुभम भाई, आपके पास आते हैं जो एक कर डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो एक ऐसी चीज है जिस पर हर नागरिक की नजर होती है जब बजट भी आता है। तो इनकम टैक्स रिफॉर्म्स जो हुई हैं पिछले 12 वर्षों में और हालिया जो रिफॉर्म्स हुई हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? जो फेसलेस असेसमेंट है या जिस तरह से इस नई जो कर प्रणाली आई है जो ऑप्शनल थी और जिसमें आपका रेट लोअर है लेकिन एग्जेम्पशंस नहीं है, तो ये जो पूरी जो एक जो बदलाव है उसके क्या क्या पहलू आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं एक सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से?
2: देखिए, इनकम टैक्स आदतन एक टैक्स ऑन लेबर है कि लोग जो परिश्रम करते हैं उसके ऊपर टैक्स है। तो
1: जी
2: निश्चित ही अगर ऐसा टैक्स अगर हो तो इस टैक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि लोगों को परिश्रम का जो एफर्ट का जो रिवॉर्ड है वो लगे कि सरकार के पास ही जा रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा है। तो पहली बात तो पिछले साल जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बदलाव लाए टैक्स रेट्स में, 12 लाख तक के इनकम को उन्होंने इनकम टैक्स से रियायत दे दी, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और ये इनकम टैक्स में जनरली बदलाव बहुत जल्दी नहीं किया जाता है, 5 साल 6 4 साल वगैरह के अंतराल में किया जाता है। और लेकिन हर बारी वित्त मंत्रियां थोड़े थोड़े करके इस टैक्स में कुछ कुछ, मतलब जैसे कहते हैं लोगों के लिए लुहाने बनाते थे, इन्होंने एक झटके में इसको उठा के 8 लाख से उठा के 12 लाख कर दिए।
1: जी
2: अपने आप में ये बहुत बड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया कि भाई इतना तक के इनकम, 12 लाख भारत जैसे देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पर कैपिटल इनकम के हिसाब से अगर देखें तो ज्यादातर क्या ओवरवेलमिंग परसेंटेज ऑफ लोग जो इनकम कर रहे हैं सैलरी से मिल रहा है वो 12 लाख के सीमा रेखा के अंदर आ जाते हैं, और बाकी डिडक्शन वगैरह लेकर और भी उसके ऊपर थोड़ा सा 12 लाख 75 हजार का पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही मूलभूत बदलाव था कि कॉन्फिडेंस इनकम टैक्स पेयर्स के ऊपर।
1: जी
2: दूसरी बात जिसके आपने अपने जो प्रसंग उठाया वो था फेसलेस असेसमेंट। ये फेसलेस असेसमेंट का मतलब क्या है कि भाई इनकम टैक्स आप दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो इलेक्ट्रॉनिक बना दिया गया है, और वो ही बहुत बड़ा एक बदलाव था कि धीरे धीरे चलते हुए अभी इनकम टैक्स को किसी जगह पे जाके टैक्स देने का संभावना है ही नहीं, किसी सरकारी कर्मचारी से आपकी मुलाकात होगी ही नहीं, क्योंकि टैक्स आप जो भरेंगे और टैक्स के जो फॉर्म्स आएंगे वो प्री सेट टैक्स फॉर्म्स आ जाएंगे। यानी कि मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भाई मेरा टैक्स क्या है, कैलकुलेशंस अपने आप में उसी में ही प्री फिल फॉर्म्स में आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा है कि सोचने का भी जरूरत नहीं है, बैंक अकाउंट देखने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर देखने की जरूरत नहीं है, उन सारे जगह से नंबर्स को समेट कर प्री फिल टैक्स फॉर्म आ जाता है, और उसमें कहते हैं कि इतना टैक्स आपका हुआ, अगर आपको सही लगता है तो यस, अगर नहीं हुआ तो फिर आप उसमें बदलाव कीजिए। तो ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर क्या, अगेन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 90% ज्यादा लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा है कि सोचने की जरूरत नहीं है, टैक्स फॉर्म पहले से भर के आ रहा है और उनके सैलरी के साथ मैच्ड है, बस अब इसको यस कर दो और आगे चलते बनो। तीसरा चीज जो किया गया वो है फेसलेस असेसमेंट, यानी कि बाकी जो लोग जिनको टैक्स में कुछ बदलाव की उन्हें लग रहा है, ये जो टैक्स पे करने के लिए मुझे कहा जा रहा है पेमेंट करने के लिए उसमें मेरी कुछ आपत्ति है, तो उसमें भी सबसे बड़ा जो चेंज कर दिया गया है कि ये नहीं कि आप बॉम्बे में बैठे हैं तो आपके बॉम्बे के ही इनकम टैक्स ऑफिसर आपको पकड़ेंगे या आपसे बात करेंगे, वो चला गया है कहीं और उनसे आपकी फिर से जो वार्तालाप होगी वो ट्रेन या प्लेन से आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, वो दूर में कहीं और पे बैठे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं और उनसे भी आपकी जो डिस्कशन होगी वो पूरी ऑनलाइन, यानी कि जो पूरा टैक्सेशन प्रोसेस

0: है डायरेक्ट टैक्स का,
1: जी
0: वो इतना इम्पर्सनल कर दिया गया कि लोगों को इस बारे में
1: जी
0: सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए आप जब देख रहे हैं, आप जो नंबर का जिक्र किए कि इतना ज्यादा नंबर्स पे लोग टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स फाइलर्स का नंबर आ गया है, वो
1: जी
0: इसीलिए कि ये प्रोसेस इतना ही ऑटोमेटिक बन गया है कि इस प्रोसेस में ज्यादातर लोग शायद याद भी नहीं रखते कि हमने टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं। और इससे फायदा क्या हुआ है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नागरिक के लिए जिंदगी आसान हो गया है, दूसरा सरकार के लिए भी ट्रैकिंग की इनकम टैक्स आ रहा है, इनकम टैक्स में एक जो रिटर्न आएगा वो कितना किस परसेंटेज से बढ़ेगा, तो अपने बजटिंग के में ये एक सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सुविधा हो जाता है कि उनको पता है कि इतना सारा जितने सारे टैक्स में देने वाले लोग थे, इनके खेमे में आने वाले थे, उन सबको उसमें डायरेक्टली इंक्लूड कर दिया गया है।
1: जी
0: तीसरा चीज जो बहुत बड़ा चीज है वो ये है कि टैक्स रिटर्न होने के वजह से फॉर्मलाइजेशन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा हो गया है। छोटे छोटे इनकम सैलरीड वाले जो कंपनियां, जो एसएमई वाले इंटरप्राइजेस हैं,
1: जी
0: उनके लिए भी इनकम टैक्स देना चूंकि बहुत ही इजी है, इसीलिए लोगों को प्रवृत्ति हो गया है कि अभी इनकम टैक्स और जीएसटी इन सारी चीजों में कोई आपत्ति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे सामने आ जाते हैं।
1: जी
0: अगर हम साथ में क्यूआर कोड को, अगर उसके साथ में, अगर हम तीसरा चीज तीसरा पिलर को अगर उसके साथ में लाएं,
1: जी
0: यूपीआई का जो सिस्टम है, तो ये तीनों मिलाकर जो फाइनेंशियल सिस्टम एक इतना बड़ा, एक 1.5 बिलियन लोगों की जो एक इतनी बड़ी तादाद है, इन सब के लिए
1: जी
0: एक जिसे कहते हैं फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बन गया है, जिसका संभव क्या, इनफैक्ट मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ दुनिया में इसका कोई तुलना ही नहीं है कि
1: जी
0: इतने बड़े लोगों को इतने कम समय में इतने बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क के अंदर शामिल करना, उनके लिए एक आइडेंटिटी देना और साथ में उनके लिए ये भरोसा देना कि ये चीज आपके लिए काम का है।
1: अनिल जी, अगर आपके पास आए, आपको लगता है एक और भी एस्पेक्ट है कि भयमुक्त हो गया है अब, जो करों का जो एक डर होता था वो खत्म हो गया है और ट्रांसपेरेंसी आ गई है पूरे सिस्टम में?
2: काफी हद तक सोनू आ गया है, लेकिन जो एक माइंडसेट है जो
1: जी
2: हमारे रेगुलेटर्स में है वो उसको बदलना बहुत आवश्यक है। वो टाइम लगेगा, अभी वो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एरा का अभी भी ट्रॉमा इनके दिमाग में है। तो रेगुलेटरी ओवररीच जो है वो हमें जीएसटी में भी दिखते हैं, मतलब एनेक्डोटली जो दिखता है, इनकम टैक्स में भी दिखता है। तो इसको और भी ट्रांसपेरेंट करना होगा, लेकिन वित्त मंत्री इसके, शी इज अवेयर ऑफ इट। उन्होंने
1: जी
2: हाल में ही इनफैक्ट कुछ चेंजेस लाने का उन्होंने एक प्रॉमिस किया था, लेकिन पिछले बजट में नहीं लेके आ पाई वो। तो मुझे लगता है अगले बजट में वो ट्रांसपेरेंसी के लिए और चेंजेस लाएंगी, तो डेफिनेटली वो बदलाव तो आया ही है।
1: आइए सुनते हैं जीएसटी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट।
3: जीएसटी लागू होने से पहले देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था कई अलग अलग केंद्रीय और राज्य करों में बंटी हुई थी। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स और मनोरंजन कर जैसे कई कर अलग अलग स्तरों पर लगाए जाते थे। राज्यों के बीच टैक्स की दरें और नियम भी अलग थे। इसका असर कारोबार की लागत, सामान की कीमत और देश भर में व्यापार की गति पर पड़ता था। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी टैक्स पर टैक्स, यानी एक चरण पर चुकाए गए टैक्स का बोझ अगले चरण की कीमत में शामिल हो जाना। जीएसटी पर काम की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। वर्ष 2006 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक सहमति बनने में कुछ समय लगा। वर्ष 2016 में संविधान के 101वें संशोधन के बाद जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। इसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच दरों, नियमों और राजस्व से जुड़े मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श भी हुआ। आखिरकार 1 जुलाई 2017 को जीएसटी देश में लागू हुआ। इस वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार माना गया। जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के 17 अलग अलग करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था में शामिल किया। जीएसटी की खासियत यह रही कि इसमें टैक्स का भुगतान केवल उत्पादन या बिक्री के अलग अलग चरणों पर नहीं, बल्कि वस्तु या सेवा की आपूर्ति पर आधारित किया गया। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था ने कारोबार की अलग अलग कड़ियों में टैक्स के दोहराव को कम करने में मदद की। शुरुआत में नई डिजिटल व्यवस्था को अपनाना कारोबारियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन समय के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, ई वे बिल और ई इनवॉइस जैसी व्यवस्थाओं ने टैक्स अनुपालन को अधिक डिजिटल और व्यवस्थित बनाया। इसी बदलाव का असर टैक्स बेस पर भी दिखाई दिया। वर्ष 2017 में जीएसटी के करीब 66.5 लाख करदाता थे। मई 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 1.65 करोड़ हो गई। इसी

0: अवधि में सकल जीएसटी संग्रह 2017-18 के करीब 7.4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में लगभग 22.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी जीएसटी ने केवल टैक्स जमा करने का तरीका नहीं बदला, इसने देश के कारोबार को एक साझा बाजार से जोड़ने, अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक बनाने और टैक्स अनुपालन को डिजिटल करने की दिशा में भी बड़ा बदलाव किया। आज जीएसटी की व्यवस्था लगातार विकसित हो रही है। दरों में बदलाव से लेकर प्रक्रियाओं के सरलीकरण तक इसका उद्देश्य अब केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि कम जटिलता, ज्यादा पारदर्शिता और आसान अनुपालन वाली व्यवस्था तैयार करना है।
1: तो जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि पॉलिसी जो एनवायरनमेंट होता है इट इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे जैसे सिचुएशंस इवॉल्व होती हैं तो पॉलिसी को भी इवॉल्व होना होता है। और जैसे कि अभी हमने देखा कि जीएसटी की जो लेटेस्ट मीटिंग, उसमें प्रोसेस रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, स्लैब्स तो कम हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन प्रोसेस रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म उस पर अभी भी कार्य हो रहा है। एक और जो एरिया है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, अगर आपके पास आए शुभ मोय, फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिफॉर्म्स हैं, फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसमें जो रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि जो बिजनेसेस हैं उनमें एक सुगमता आए व्यापार में और उस साथ ही साथ सेफगार्ड भी हो, इसको आप कैसे देखते हैं? कई चरणों में ये सरकार ने इन 12 वर्षों में किया है, सो ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है ऐसे समय पे जब बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट जरूरी हो गया है?
2: सोनू जी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो बदलाव आया है उसके साथ एक और बदलाव साथ में आया है। इनफैक्ट मैं दो चीजों का जिक्र करूंगा
1: जी।
2: एक आया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो ये एक साथ में एक मूलभूत चेंज, और इसके साथ में FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये तीनों का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि तीनों एक दूसरे को इम्पेक्ट करते हैं।
1: जी जी,
2: सरकारी मूलतंत्र का ये सिक्वेंस रहा था कि हम इस तरीके से बदलाव लाएंगे कि मोटा मोटी जो भी शख्स नहीं, मैं कहूंगा कंपनी, या फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं या फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो उनकी जो प्रोसेस होनी चाहिए वो समान तरल होनी चाहिए। यानी कि के पहले, अब देखिए जिसका जिक्र अनिल जी पहले कर रहे थे कि एक पुरानी माइंडसेट की, ये पुरानी माइंडसेट फॉरेन एक्सचेंज के मामले में बहुत ज्यादा था और हमने बहुत सारे हॉरर स्टोरी सुने थे फॉरेन एक्सचेंज को लेकर कंपनियों में बहुत सारे झमेले, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रेड्स, इधर इनफैक्ट स्टेट लेवल में भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के बहुत सारे अनुशासन वगैरह वगैरह, इन सब मिलाकर एक अस्त व्यस्त हालत था फॉरेन एक्सचेंज को लेकर। इसमें प्रगति लाने में सरकार ने सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बदलाव जो लाए हैं वो ये है कि सारे कंपनियों को उन्होंने एनकरेज किए हैं कि आप या तो कंपनी यानी कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज के तहत आप रजिस्ट्रेशन हो जाइए, और अगर ना भी हो सके तब भी अगर आप सेक्शन 8 कंपनी, जो कंपनीज एक्ट के तहत ही आता है लेकिन वो एक जिसे कहते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी है कि आपके प्रॉफिट लॉस कुछ का दायरा नहीं है लेकिन आप फिर भी एक कंपनी, तो आपके लिए वही मोटा मोटी रूल्स लागू होंगे जो बड़े कंपनियों के लिए
1: जी।
2: तो इससे फायदा क्या हुआ है कि सबके लिए फॉरेन एक्सचेंज ट्रीटमेंट सिस्टम क्लियर हो गया है, और ये चीज FCRA में भी काफी हद तक पुश किया गया है कि जो कंट्रीब्यूशंस आएंगे फॉरेन एक्सचेंज के, जो फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए कामकाज होंगे वो शुड बी अबव बोर्ड, यानी कि वो दिखना चाहिए कि किस लिए किस तरीके से आ रहे हैं। और इसकी जरूरत क्यों है, अगर हम दुनिया की किसी भी बड़े देश को अगर हम देखें इस वक्त, तो एक बहुत बड़ा उथल पुथल चल रहा है, और वो उथल पुथल क्यों चल रहा है, क्योंकि करेंसी, दूसरे देशों से आने वाले पैसे, उसके चलते राजनीतिक इम्पैक्ट, दबा दबोच वगैरह, बहुत सारी चीजों की प्रक्रिया है, उन सभी चीजों के चलते हुए सारे बड़े बड़े देशों में इस पर निगरानी रखने की नया नया सिस्टम्स जो इनकोऑर्डिनेटेड है उनको लाया गया, और उसको लाने के लिए क्या किया गया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अंतर्जातिक एक सिस्टम है, इसमें भारत 2014 में मेंबर बन गया है, और भारत काफी जिसे कहते हैं इलस्ट्रियस मेंबर बन गया है इसका। ये OECD का पहले होता था, सिर्फ ये डेवलप्ड कंट्रीज का एक क्लब था जिसमें भारत पहला नॉन OECD मेंबर है जो इस FATF के मेंबर बने, फुल मेंबर बन गए, और फुल मेंबर होने की वजह से क्या हुआ कि भारत की जो एक उन देशों के बीच में विश्वास आया कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज ट्रीटमेंट अंतरराष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत है, ये एक बहुत बड़ी चीज है
1: जी।
2: दूसरा, भारत का जो ट्रीटमेंट है वो

0: दूसरे देशों के लिए, खासकर ग्लोबल साउथ के बाकी सारे देशों के लिए एक तुलनात्मक चीज बन गया है कि इस तरीके से किया जा सकता है। ये चीजें सब मिलाकर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में जो एक सुधार किया गया है, वो सब मिलाकर बन गया है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब
1: जी
0: नेचुरली कि ऐसे इंटीग्रेटेड सिस्टम बनेंगे तो उसमें होता ही है कि कुछ किसी न किसी को इसमें मुश्किल पहुंचती है, वो लाजमी है। लेकिन ये जो पूरे जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की जो ट्रांसपेरेंसी है, उस पर कोई दो राय। और
1: जी
0: इसलिए आप देखेंगे इसके साथ ही एक और चीज किया गया था जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में बहुत काम में आया, वो
1: जी
0: है शेल कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज हमारे देश में होते थे जो सिर्फ नाम से होते थे, और
1: जी
0: एक एक एड्रेस में 200-300 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन होती थी। इन सारी कंपनीज का बेसिकली काम था फॉरेन एक्सचेंज को लाना और लाकर कोई ना कोई गलत काम में इसको इस्तेमाल करना। आपको
1: जी
0: याद होगा ट्रेवल वगैरह में बहुत सारे टाइम में हमने जब इस पर जब बारीकी से जांच हुआ है तो देखा गया है कोई ना कोई शेल कंपनी के थ्रू से ही ये सारे पैसे आए। ये सारी चीज जड़ से उखाड़ने के लिए जो प्रक्रिया किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू से,
1: जी
0: इससे बहुत बड़ा फायदा आया है कि अभी किसी भी सरकारी तंत्र के सिस्टम्स को इन बारे में, इस बारे में पता चलता है, पूछ रहती है किस तरीके से उसको निपटा जाए, उस पर वो खबर रख सकते हैं। जी
1: अनिल जी, एक और जो पहलू है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि विश्वास बना है बिजनेसेस को शामिल करने के लिए, जन विश्वास जो अधिनियम आया है 2023 में, जिसमें डिक्रिमिनलाइज किए गए हैं 183 प्रोविजंस 42 सेंट्रल एक्ट्स में, और उनको क्रिमिनल ऑफेंस से सिविल पेनल्टीज में बदला गया है जो माइनर और टेक्निकल लैप्सेज है, ये कितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है? और जो पुराने लॉज हैं उनमें लगभग 1500 जो सेंट्रल लॉज थे जो आउटडेटेड थे उनको हटाया गया है, ये भी क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है?
2: बिल्कुल सोनू जी, इनफैक्ट इसको इतनी देर हो गई यही मैं हैरान हूं। जो ये जो पुराने जो लॉ होते थे, अजीब अजीब किस्म के कानून होते थे जो अंग्रेज बना के गए, तो वो आज तक चलते आ रहे थे। तो उनको जैसे एक एक करके जो इसको हटाने का जो प्लान था, आप जान के हैरान होंगे, ये 1993 का है। जो स्वर्गीय विवेक देबरॉय थे, ये उस टाइम IIFT में थे। इन्होंने एक एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था और उसमें इन्होंने सारे जो लॉस थे ये जो हटाने हैं, तो 1993-94 में इन्होंने छापा था ये कमिटी का रिपोर्ट। और उसको मतलब ये सरकार जो है, मोदी जी की सरकार जब आई, इन्होंने उसको उठाया और फिर उसको जो प्रोसेस रिफॉर्म लेवल पे पुश किया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो जो हमने डिस्कस किया कि जो माइंडसेट है,
1: जी
2: जो एक मतलब बिजनेसमैन की ओर जो है एक एक अप्रोच है, वो उसमें तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो ये लॉज हैं, अब इनको भी बदलना है। अब जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा कि रेगुलेटरी ओवररीच, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो ये ना भारत सरकार ना स्टेट लेवल सरकार इसका कोई मसले का हल तुरंत ढूंढ पा रहे हैं। इस पे कोशिश तो जरूर जारी है, लेकिन इस पे और भी मेहनत करना है, क्योंकि हमारे जो ये उद्योगपति हैं, खास करके मध्यम वर्ग में, इनको जो रेगुलेटरी जो हैरासमेंट होता है, इसके कारण फ्रिक्शन बढ़ता है। जब फ्रिक्शन बढ़ता है, इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, मतलब तो ग्रोथ नहीं होता है।
1: जी
2: तो इसको हटाना एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी, नेशनल प्रायोरिटी बनाना चाहिए।
1: जी तो शुभमय, जो अभी अनिल जी कह रहे थे कि कांस्टेंट सिंप्लीफिकेशन प्रोसेसेस की रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के थ्रू, जिसका जिसके बारे में सरकार भी पूरी तरह प्रयासरत है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की हम बात सुनते हैं, और डिजिटलाइजेशन से अलग अलग जो बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं, GST की तो हमने बात करी ही, आपको परमिट्स मिलने हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्रेडिट जो मिलता है ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो उसमें ईज आई है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको लगते हैं ओवरऑल जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको बेहतर करने के लिए?
0: बिल्कुल सोनू जी, और इसमें अगर आप देखें कि अभी जो डिबेट चल रहा है एमडीआई एम चार्जेस को लेकर, एमडीआर चार्जेस को लेकर यूपीआई में, अगर आप इसको देखें तो ये बड़ी दिलचस्प चीज है। वो क्यों? क्यों एक समय था जब लोग कैश से ही कोई

0: करना नॉर्मल मानते थे, उसी में ही चलते थे।
1: जी
0: आज भारत की इतनी बड़ी जनता का तादाद यूपीआई के बनाए हुए
1: जी
0: क्यूआर कोड के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि उनको अभी लगता है कि ये चीज हट जाएगा तो हमारे लिए हम फिर से वापस पहुंच जाएंगे कहीं, और वो पहुंचना नहीं चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं माइंडसेट का बदलाव है। अगर हम इसको
1: जी
0: देखें तो
1: जी
0: ये अविश्वसनीय है कि किस तरीके से लोग

0: ऊपर तर्क हो सकता है, लेकिन एक इतना बड़ा चेंज कि जो गरीब से और इस चेंज इसलिए मूलभूत है कि गरीब से गरीब आदमी भी कहता है कि नहीं, हम सबसे बड़ा ये जरा देखिएगा कि कहीं हमको इससे हटना पड़े, इससे हम
1: जी
0: हटना जाए।
1: जी
0: तो ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आप कह रहे हैं जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, वो इसका एक जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा मिसाल है। और इसमें सिर्फ क्यूआर कोड नहीं, अगर आप इसके नीचे देखें तो इसमें इंक्लूडेड है बैंक अकाउंट, यानी कि देश के सारी जनता एडल्ट जो है सबके पास बैंक अकाउंट है। अगर हम इसके नीचे जाए तो देखेंगे कि इसके नीचे सबके आधार कार्ड जो श्रृंखला है वो है। तो कुल मिलाकर ये एक फाइनेंशियल सिस्टम को बदल देने का इतना बड़ा एक जिसे कहते हैं एक एक ठिकाना है, एक सिस्टम है जिसको जिसका फिर से मैं वही कहूंगा कि इसका फ्रेंकली कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में।
1: जी
0: और ये चीज साथ में अगर आप देखें बाकी सारे चीजों में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी, बाकी क्षेत्र में भी इसी का ही जोर है, इसी का ही आवाज है कि भाई हमें भी इसी तरह का सुविधा चाहिए कि
1: जी
0: अगर इनकम टैक्स आराम से भर सकते हैं, अगर हम जीएसटी में कोई झमेला नहीं होता है, अगर पेमेंट प्रक्रिया अगर सुचारू ढंग से चलता है, जिस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपको याद होगा कि जैसे एक टाइम था कि स्मॉल कंपनीज को जब अपना कैश लेकर जाते थे बैंकों में, तो आए दिन खबर आती थी कि फलाने के डगर पे डाका लग गया है, यहाँ पे कुछ वो पैसे लूट पाट हो गया है। अब वो सारे खबरें जिसे कहते हैं इतिहास बन चुका
1: जी
0: है,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: वो पैसे लेकर जाते नहीं है,
1: बिल्कुल
0: वो जरूरत नहीं होती है।
1: बहुत
0: तो ये चीजें जो गांव दूर दूर के गांव तक में भी ये इसका प्रक्रिया इतना बड़ा बन चुका है कि वहां पर तो खासकर इस चीज को लेकर ही लोग चलते हैं कि भाई पैसे लेकर कौन चलेगा।
1: जी
0: तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं स्तंभ है। अगर हम इसको अगर आगे देखें कि ये किस तरीके से बिजनेस को बदल रहा है, तो बिजनेस चलाने में जो परमिट्स हैं और जो प्रोसेसेस हैं वो सारे फिर इसी से ही जुड़े हुए बन गए हैं कि किसी बिजनेस को किसी चीज परमिट मिलने में काफी आसानी हो गई है। और हाँ, मैं ये जरूर मानूंगा कि अभी भी बहुत सारी जगह पे और वो शायद हमारी एक गलत हमारी जो तरीका है कि हम फूड क्वालिटी कैसे रख रहे हैं, उसमें क्या चीज किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, उस पर जरूर निगरानी होनी चाहिए, उस पर
1: जी
0: लोगों को भरोसा आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि एक कंपनी जिनके नाम हमारे मुंह से एकदम जस्ट बच्चा बच्चा भी याद बोल देता है, कि ये सारे कंपनियों का हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे अगर इस तरह का पेमेंट सिस्टम नहीं आ सकता। और इससे आज जुड़े हुए जो
1: जी
0: गिग इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए इतने मिलियंस की जो नौकरी है, ये पूरा ये सोच में भी नहीं आ सकता था अगर ये फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का बंदोबस्त अगर नहीं तैयार होता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभमोय अनिल, आप शामिल हुए इस कार्यक्रम में, जनसेवा से देश सेवा, और आपने इतनी बारीकी से हमें समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद सोनू जी।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 25वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: ఇంతవరకు మీరు భారత ప్రధాని గౌరవనీయులు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రజాపాలనలో 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే విన్నారు.

नवरात्रि का महत्व, बतकम्मा की कहानी, उसके 9 दिन, उसके लोकगीत और उस परंपरा के पीछे छिपे सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संदेश को

0: चलिए शुरुआत करते हैं माँ दुर्गा के नाम से।
1: जयदीप, नवरात्रि शब्द का अर्थ ही है नौ रातें। ये पर्व माँ दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों की उपासना से जुड़ा हुआ है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में इसे मनाने की परंपराएं अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन आस्था का केंद्र है शक्ति की उपासना।
0: बिल्कुल उत्तर

भारत में लोग व्रत रखते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और कई जगहों पर रामलीला होती है। गुजरात में गरबा और डांडिया की रौनक देखने को मिलती है। बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडाल, प्रतिमाएं और सिंदूर खेला अपनी खास पहचान रखते हैं।

0: और दक्षिण भारत में गोलू की परंपरा भी है, जहां घर में देवी देवताओं, गुड़ियों और विभिन्न दृश्यों को सीढ़ीनुमा सजावट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
1: यानी एक ही पर्व लेकिन कितने सारे रंग। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि शक्ति का अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि साहस, करुणा, विवेक और अन्याय का सामना करने की हिम्मत भी है।
0: और तेलंगाना में इसी नवरात्रि के आसपास एक और अनोखी परंपरा अपने पूरे रंग में खिलती है। यहाँ न सिर्फ मंदिरों में घंटियाँ बजती है, बल्कि गलियों और मोहल्लों में तेलुगु लोकगीतों की गूंज भी सुनाई देती है।
1: और उस परंपरा को समझने के लिए हमें समझना होगा तेलंगाना की मिट्टी, यहाँ के फूलों और यहाँ की महिलाओं की सामूहिक संस्कृति को।

0: कृष्णा जी, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बतकम्मा समझाना हो जिसने कभी इस त्योहार को देखा ही नहीं, तो आप कैसे समझाएंगे?
1: मैं कहूँगी, कल्पना कीजिए कि बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों को एक के ऊपर एक गोले परतों में सजाया गया है। नीचे का हिस्सा चौड़ा है और ऊपर जाते जाते ये रचना छोटी होती जाती है। इससे फूलों से बने एक सुंदर गोपुरम जैसा आकार दिखाई देता है। इसी फूलों की सजावट को बतकम्मा कहा जाता है।

0: और ये कोई आम फूलों की सजावट नहीं है। इसका गहरा रिश्ता तेलंगाना की संस्कृति, माँ गौरी की उपासना, महिलाओं की भागीदारी और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता से है। तेलुगु में बतुकु का अर्थ जीना या जीवन से जोड़ा जाता है और अम्मा का अर्थ है माँ। इसीलिए बतुकम्मा को आम तौर पर माँ जीवन देने वाली जैसे भाव से समझा जाता है।
1: इस उत्सव में फूलों को एक पारंपरिक थाली जिसे तांबुलम कहा जाता है पर परतों में सजाया जाता है। फिर महिलाएं इसके चारों ओर इकट्ठा होती है, गीत गाती है और थाल के साथ घूमकर उत्सव मनाती है।

0: और एक खूबसूरत बात देखिए, कई त्योहारों में हम प्रकृति से मिली चीजों का उपयोग करते हैं, लेकिन बतुकम्मा में फूल ही उत्सव का केंद्र है। यहाँ फूल सिर्फ मंदिर की सजावट तक सीमित नहीं है, वो पूरे समुदाय को एक जगह लेकर आते हैं।
1: इसीलिए बतुकम्मा को तेलंगाना

0: अपनी सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है।
1: कृष्णा जी, अब सवाल ये है कि बतुकम्मा की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे कोई कहानी है?
0: जी हाँ, बतुकम्मा से जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित है। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार एक राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम बतुकम्मा रखा गया। समय के साथ उसे फूलों, जीवन और देवी की उपासना से जोड़ने वाली परंपरा प्रचलित हुई।

0: ये याद रखना जरूरी है कि ये एक लोक कथा है, बतुकम्मा के इतिहास की एकमात्र प्रामाणिक उत्पत्ति कथा नहीं। लोक परंपराओं में कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। उनका महत्व सिर्फ इतिहास की तारीख जानने में नहीं, बल्कि उन मूल्यों को समझने में भी है, जिन्हें समाज उनके माध्यम से आगे बढ़ाता है। बतुकम्मा के साथ भी ऐसा ही है।
1: इसका संबंध तेलंगाना के कृषि जीवन और मौसम में होने वाले बदलावों से भी है। ये आमतौर पर मानसून के अंतिम चरण और शरद ऋतु के आगमन के आसपास मनाया जाता है। बारिश के बाद खुले मैदानों में कई तरह के जंगली और मौसमी फूल खिलते हैं। गांवों, खेतों और तालाबों के आसपास का प्राकृतिक दृश्य बदल जाता है।
0: और जब प्रकृति इतने सारे रंग लेकर सामने आए, तो लोगों ने उस सुंदरता को अपने आस्था और सामुदायिक जीवन का हिस्सा बना लिया। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बतुकम्मा की परंपरा की सही शुरुआत की तारीख को लेकर एक ही निश्चित सर्वमान्य ऐतिहासिक दावा करना आसान नहीं है। इसका महत्व सदियों से चली आ रही क्षेत्रीय परंपरा में है।
1: जयदीप, बतुकम्मा में इस्तेमाल होने वाले फूलों के नाम सुनना भी अपने आप में एक अलग अनुभव है। टेंगड़ू पुवलू, गुनुगु पुवलू, बंती और चामंती, इनमें से कई फूल तेलंगाना के मौसमी प्राकृतिक परिवेश और स्थानीय परंपराओं से जुड़े हुए हैं।

तेंगेड़ू के पीले फूल और गुनगु के रंग बिरंगे फूल बतुकम्मा की सजावट में खास जगह रखते हैं। इनके साथ अन्य स्थानीय और मौसमी फूल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फूलों को रंगों के अनुसार परतों में सजाया जाता है, इसीलिए जब एक बड़ी बतुकम्मा तैयार होती है तो वह दूर से रंग बिरंगे फूलों से बनी किसी सुंदर मंदिर जैसे दिखाई देती है।

0: देवताओं की अपनी अलग परंपरा है। इन दिनों को अलग अलग नैवेद्य यानी देवी को अर्पित किए जाने वाले भोजन के नाम से पहचाना जाता है। परंपरागत रूप से इनके नाम है, पहला दिन इंदली पूल बतुकम्मा, दूसरा दिन अटकुला बतुकम्मा, तीसरा दिन मुद्दा पप्पू बतुकम्मा, चौथा दिन नानबियम बतुकम्मा, पांचवा दिन अटला बतुकम्मा,
1: छठा दिन अलीगिना बतुकम्मा।

0: स्थानीय परिवारों और परंपराओं के अनुसार कुछ नामों के उच्चारण या व्यंजनों की तैयारी में अंतर मिल सकता है।
1: और भोजन की बात करें तो इसमें दाल, चावल, तिल, गुड़ और अन्य स्थानीय सामग्री से बने पकवान मिलते हैं। अंतिम दिन सद्दुल बतकम्मा पर चावल से बने 5 प्रकार के पकवान अर्पित करने की परंपरा भी है।
0: यानी हर दिन सिर्फ फूलों का एक नया उत्सव नहीं, बल्कि घर के लोगों के साथ बैठकर तैयारी करने, भोजन बांटने और परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर भी है।

0: दोस्तों, अभी आपने जो लोक गीत सुना उसमें एक अलग ही मिठास है। ये गाना सिर्फ सुर और ताल नहीं बल्कि तेलंगाना की लोक जीवन की कहानियाँ भी अपने भीतर समेटे होते हैं।
1: बिल्कुल, बतकम्मा के गीतों में देवी की स्तुति मिलती है, लेकिन साथ ही परिवार, रिश्तों, गांव के जीवन, रोजमर्रा के अनुभवों और महिलाओं की भावनाओं की झलक भी दिखाई देती है। कई गीत मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए हैं, इसलिए उनके बोल और धुनों में स्थानीय रूप अलग अलग हो सकते हैं।

0: और एक दिलचस्प बात, इन गीतों को गाने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई मंच हो, माइक्रोफोन हो या ट्रेंड सिंगर हो। मोहल्ले की महिलाएं इकट्ठा होती है, एक गीत शुरू करती है और बाकी सभी उसमें अपनी आवाज मिला देते हैं।
1: बदकम्मा के चारों ओर घूमकर गीत गाने और ताल के साथ कदम मिलाने की परंपरा में एक सामूहिक लय होती है। हर व्यक्ति अलग है लेकिन सभी एक ही घेरे का हिस्सा बन जाते हैं।
0: और आज के जमाने में जब हम अपने पड़ोसियों से मिलने के लिए भी समय नहीं निकाल पाते, ऐसे उत्सव हमें एक दूसरे से जुड़ने का मौका देते हैं। बच्चियां अपनी माँ और दादी से गीत सीखती हैं, बुजुर्ग महिलाएं पुराने बोल याद दिलाती हैं, नई पीढ़ी उन्हीं गीतों को नए अंदाज में गाती है।
1: ये भी संस्कृति को जीवित रखने का एक तरीका है। हर परंपरा किताबों में नहीं लिखी होती, कुछ परंपराएं लोगों की आवाज में जीवित रहती है। अब जरा कल्पना कीजिए, शाम का समय है, घरों के आंगन में फूलों की खुशबू है।

0: महिलाएं पारंपरिक साड़ियों और गहनों में तैयार है और बीच में सजी हुई बतकम्मा रखी है।
1: मोहल्ले की दूसरी महिलाएं भी अपनी अपनी बतकम्मा लेकर पहुंचती है। धीरे धीरे से एक बड़ा सा घेरा बन जाता है। कोई गीत शुरू करता है, बाकी लोग उसका साथ देते हैं। तालियों और कदमों की ताल के साथ पूरा माहौल जीवंत हो उठता है।
0: कई परिवारों में विवाहित बेटियां अपने मायके लौटकर भी उस उत्सव में शामिल होती हैं। इस तरह ये पर्व परिवार से मिलने और रिश्तों को मजबूत करने का अवसर भी बन जाता है
1: और शहरों में भी इसकी रौनक देखने को मिलती है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलग अलग इलाकों में सामुदायिक आयोजन, फूलों की सजावट, लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं।

0: लेकिन हर जगह का तरीका एक जैसा नहीं होता। कहीं छोटे समूह घरों के पास मिलते हैं, तो कहीं बड़े सार्वजनिक आयोजन होते हैं।
1: इसमें एक सुंदर बात है, उत्सव का केंद्र सिर्फ एक व्यक्ति या एक घर नहीं होता, पूरा समुदाय मिलकर इसे जीता है।
0: और जब सभी लोग अपनी अपनी बतुकम्मा लेकर आते हैं, तो हर रचना अलग होती है। किसी में पीले फूल ज्यादा है, किसी में गुलाबी, किसी में सफेद और बैंगनी रंग, बिल्कुल हमारे समाज की तरह। अलग अलग रंग लेकिन एक साथ।

0: तेलंगाना पर्यटन के विवरण के अनुसार बतुकम्मा उस मौसम में आता है जब मानसून के बाद कई स्थानीय जंगली फूल खिलते हैं। ये पर्व उन फूलों और प्राकृतिक संपदा के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता है।
1: यानी हमें याद आता है कि प्रकृति सिर्फ देखने की चीज नहीं है, हमारा भोजन, पानी, खेती और रोजमर्रा का जीवन उससे जुड़ा है।
0: कुछ स्थानीय परंपराओं में फूलों को पानी में विसर्जित किया जाता है। हैदराबाद जिले की सरकारी जानकारी में भी बतुकम्मा और तालाबों के साथ इसके पारंपरिक संबंध का उल्लेख मिलता है।
1: आज के समय में हमें ये भी देखना है कि उत्सव के बाद तालाब और झील साफ रहें। प्लास्टिक, सिंथेटिक सजावट, केमिकल रंग और अन्य कचरा पानी में नहीं जाना चाहिए। प्रकृति के नाम पर मनाए जाने वाला त्योहार प्रकृति की सुरक्षा का संकल्प भी बन सकती है।
0: और अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। बतुकम्मा में महिलाएं चलती हैं, खड़ी होती हैं, गीत गाती हैं और ताल के साथ घूमती हैं। इससे हल्की शारीरिक गतिविधि, मनोरंजन और लोगों में मिलने जुलने का अवसर मिल सकता है।
1: सामुदायिक गतिविधियों से अकेलापन कम करने और मन को अच्छा महसूस करने में मदद मिल सकती है। साथ गाना और परंपरा में भाग लेना कई लोगों के लिए भावनात्मक रूप से भी सुखद होता है। लेकिन बतुकम्मा को किसी बीमारी का इलाज नहीं समझना चाहिए और फूलों के औषधीय होने का पारंपरिक मान्यता को भी प्रमाणित चिकित्सीय लाभ से अलग समझना जरूरी है।
0: सही कहा, उत्सव का आनंद लीजिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए।
1: अब आते हैं उस दिन पर जिसका इंतजार बतुकम्मा के 9 दिनों के दौरान रहता है, सद्दुला बतुकम्मा, जिसे पेद्दा बतुकम्मा भी कहा जाता है।
0: ये उत्सव का भव्य समापन होता है। इस दिन परिवार और समुदाय मिलकर बड़ी बतुकम्मा तैयार करते हैं।

0: फूलों को बड़े ध्यान से सजाया जाता है और पारंपरिक पूजा की जाती है।
1: घरों में नैवेद्य तैयार होता है और शाम के समय महिलाएं अपनी बतकम्मा के साथ गीत गाती है, घेरा बनाकर उत्सव मनाती है। फिर परंपरा के अनुसार बतकम्मा को नजदीकी तालाब या अन्य जलाशय तक ले जाया जाता है और उसका विसर्जन किया जाता है।
0: विसर्जन का ये पल उत्सव के समापन का प्रतीक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि लोगों की आस्था या उनकी परंपरा समाप्त हो गई। फूलों का उत्सव समाप्त होता है, लेकिन उससे जुड़े यादें, गीत और अगले साल फिर मिलने का उत्साह साथ रहता है।
1: और दोस्तों, अगर हम परंपरा को आज के समय में मनाते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी भी है। विसर्जन के लिए स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, जहां निर्धारित विसर्जन स्थल हो उनका उपयोग करें और तालाबों में ऐसे सामग्री ना छोड़े जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होते,
0: क्योंकि प्रकृति को नमन करना और उसकी रक्षा करना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1: कृष्णा जी, आज बतुकम्मा का गीत सिर्फ गांव के आंगन तक सीमित नहीं रहे, रेडियो, टेलीविजन, स्टेज परफॉर्मेंसेस और डिजिटल माध्यमों के जरिए भी लोग इन्हें सुनते हैं।
0: जी हाँ, आज कई जगहों पर पारंपरिक लोक गीतों को नए संगीत संयोजन के साथ प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उनका मूल भाव देवी की स्तुति, सामुदायिक एकता और तेलंगाना की संस्कृति अब भी महत्वपूर्ण है।
1: लोकगीत की एक खासियत यह भी है कि उनमें स्थानीय बोली और जीवन का रंग बना रहता है। हर क्षेत्र का अपना लहजा, अपनी लय और अपनी गाने की शैली हो सकती है। और बतुकम्मा के गीतों में कई बार देवी को संबोधित करते हुए उय्यालो जैसे पुकार सुनाई देती है, जो गाने को सामूहिक और लयबद्ध रूप देती है।
0: इस तरह गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं रह जाते, वे संस्कृति को याद रखने का माध्यम बन जाते हैं।
1: और तेलंगाना की पहचान भी इसी तरह बनती है, अपनी भाषा, अपने फूल, अपने लोकगीत और अपने लोगों के साथ। जब एक बच्ची अपनी दादी से बतुकम्मा का गीत सीखती है तो वो सिर्फ एक धुन नहीं सीख रही होती, वो अपने परिवार और अपनी परंपरा से जुड़ रही होती है।
0: और जब वही बच्ची बड़ी होकर अगली पीढ़ी को वो गीत सिखाती है तो विरासत आगे बढ़ती रहती है। दोस्तों, अब तक हमने नवरात्रि के अलग अलग रूप देखे और तेलंगाना के बतकम्मा उत्सव को समझा। एक तरफ देवी की उपासना है तो दूसरी तरफ फूलों के माध्यम से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता,
1: और दोनों में एक ऐसा विचार है जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, शक्ति का सम्मान। शक्ति का मतलब केवल पूजा में देवी को नमन करना नहीं, बल्कि अपने आसपास की महिलाओं का सम्मान करना, उनके अधिकारों को समझना और उन्हें समान अवसर देना भी है।
0: बतकम्मा में महिलाओं की सक्रिय भूमिका इस उत्सव को एक विशेष रूप देती है। वे इसके गीत संभालती है, फूल सजाती है, भोजन तैयार करती है और परंपरा को आगे बढ़ाती है।
1: और प्रकृति का संदेश भी उतना ही जरूरी है। फूलों की खूबसूरती कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अगर हम प्रकृति की देखभाल करें तो उसकी सुंदरता और उसके संसाधन आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकती है।
0: यानी नवरात्रि हमें आस्था और साहस की याद दिलाती है और बतकम्मा हमें जीवन, प्रकृति, साझेदारी और संस्कृति का महत्व समझाती है।
1: तो दोस्तों, आज का हमारा सफर नवरात्रि से शुरू हुआ और हमें लेकर आया तेलंगाना के फूलों से सजे एक अनोखे उत्सव तक। बतुकम्मा, अपनी संस्कृति को संजोना और प्रकृति की रक्षा करना एक साथ चल सकता है। कृष्णा जी, मुझे लगता है कि बतुकम्मा की सबसे खूबसूरत बात उसके फूलों में नहीं, बल्कि उस घेरे में है जो लोग मिलकर बनाते हैं।
0: बिल्कुल, कोई एक व्यक्ति बीच में नहीं होता, सभी मिलकर गाते हैं, सभी मिलकर उत्सव मनाते हैं और शायद यही हर त्योहार का एक सुंदर संदेश है।
1: तो
2: नवरात्रि प्रत्येक रूपकम इन्नारु बतुकम्मा। ई रूपकम निर्वहण కృష్ణ కుమార్, జయదేవ్. ఆకాశవాణి హిందుస్థానీ శాస్త్రీయ సంగీత కార్యక్రమం. ఈనాటి కార్యక్రమంలో శ్రీ సతీష్ కష్కర్ గారి గాత్రం వింటారు. వాద్య సహకారం హార్మోనియం శ్రీ అనంత న్యాల్కల్కర్, తబలా సహకారం శ్రీ ప్రకాష్ గిడ్డి, తాన్పుర శ్రీ ఎం నరహరి. వినండి హిందుస్థానీ శాస్త్రీయ సంగీత కార్యక్రమం.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मानवाधिकारों का सीधा संबंध मानवीय गरिमा से है और इनमें स्वास्थ्य सेवा, भोजन, आवास, आजीविका और स्वच्छ पर्यावरण तक पहुंच शामिल है। उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए। हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप जो उनकी समस्या है उसका हम अपनी तरफ से उसकी सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर

0: चेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने कहा है कि लोग प्रभावित इलाकों से अनावश्यक यात्रा करने से बचें। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। मंत्रालय ने कहा कि स्थिरता बिजली संयंत्रों की दैनिक खपत के अनुरूप कोयले की आपूर्ति को दर्शाती है। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मांगरोल को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये कार्यक्रम मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में आयोजित किया गया। ये एक सुरंग रोधी जहाज था। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित मांगरोल युद्धपोत डिजाइन, निर्माण और उन्नत हथियारों तथा सेंसरों के एकीकरण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्र के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। घरेलू शेयर बाजार आज सुबह 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 71,911 पर, जबकि निफ्टी 149 अंक गिरकर 22,372 पर पहुंच गया। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Mangrol, the third anti-submarine warfare shallow water craft built by Cochin Shipyard Limited, CSL Kochi, was commissioned into the Indian Navy at the Naval Dockyard, Mumbai, this morning. Named after Mangrol, a coastal town and prominent fishing harbour in Gujarat's Junagadh district, the ship carries forward the legacy of the erstwhile INS Mangrol M85, a minesweeper that served the Indian Navy until the 7th of April 2004. The naming of the ship continues the Navy's tradition of preserving the legacy of its former warships. Built with over 80% indigenous content, Mangrol reflects India's growing capabilities in warship design, construction and integration of advanced weapons and sensors. Constructed by CSL under the government's Make in India and Atmanirbhar Bharat initiatives, the ship marks another important step towards self-reliance in defence shipbuilding. Chief Justice of India, Justice Suryakant, has said the doors of the Supreme Court are open to everyone and any petition from any common citizen or member of an elected body is welcome. He said every Indian citizen has the right to approach the court and the court will hear their concerns and grant whatever relief is due under the law. Addressing the 33rd Foundation Day of the NHRC in New Delhi, Justice Suryakant said, the Constitution has made expansive promises to every citizen, including of dignity, equality, liberty and justice.
2: Our Constitution has made expansive promises to every citizen, including of dignity, equality, liberty and justice. If the Constitution is the promise, the Commission is one of its keepers. It listens to those who cannot easily speak and it can act on its own without waiting to be asked.
1: Responding to the India bloc's demand for a meeting, Justice Suryakant said he had received a letter yesterday requesting an appointment and had replied last night.

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, जीवन में रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी हो तो मंजिल एक दिन खुद हमारा रास्ता पूछते हुए हमारे पास ही आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमारे श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखा है, सादर नमस्कार विमलेश जी और अजीत जी। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। इतने सफल प्रसारण के लिए मैं उमंग परिवार की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अगला संदेश हमें मिला है रामकुशल पटेल जी का छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं, 15 सितंबर को हमने कार्यक्रम उमंग में पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञान वर्धक जानकारी सुनी। पेड़ पौधों का हमारे जीवन और पर्यावरण में कितना बड़ा महत्व है

ये जानकर हमें बेहद अच्छा लगा। ऐसी उपयोगी जानकारी देने के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है कि उमंग कार्यक्रम निरंतर प्रसारित करते रहें। आपको बता दें कि उमंग कार्यक्रम हम पूरे परिवार के साथ नियमित रूप से सुनते हैं। कार्यक्रम हमें बेहद अच्छा और मनमोहक लगता है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां भी सुनने को मिलती हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इतनी उपयोगी प्रस्तुति के लिए। श्रोताओं, अगला संदेश हमें मिला है उरई कछार लोरमी छत्तीसगढ़ से वैशाली पटेल, हेमवर्षा पटेल, युवराज पटेल, देवराज पटेल, जगबाई पटेल और रमेश पटेल जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने, कुछ नया सीखने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर मिलता है। आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम में जिस तरह से सभी प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, वो बहुत ही सराहनीय।

बच्चों और प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने, कुछ नया सीखने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर मिलता है। आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम में जिस तरह से सभी प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूरी टीम का प्रयास प्रशंसनीय है। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को आपने यादगार बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ बमलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रसाद साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू जी का लिखते हैं, बहुचर्चित उमंग कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले अजीत एवं बिमलेश जी को सादर बधाई एवं नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों की प्रस्तुति बेहद लाजवाब रहती है, सुनकर हम आनंदित हो जाते हैं। बड़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियां तो हमें सुनने को मिलती हैं। विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होने वाले उमंग कार्यक्रम के द्वारा हमें सच में बहुत ही लाभ होता है। आपके सभी कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और मन भावन लगते हैं। महोदय, मैं 1983 में कक्षा 7वीं से आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम सुनता आ रहा हूँ। अब मेरी उम्र 61 साल की है। आकाशवाणी रेडियो का मैं दीवाना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अब सुनते हैं अगला संदेश जो हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे और हनुमान बोडखे जी का। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू जी का। और उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हमें संदेश मिला है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। सभी श्रोताओं को हमारा धन्यवाद। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है, सूर्योदय की भूमि जापान को कहते हैं। जापान का आधिकारिक नाम है निप्पॉन, जिसका मतलब है सूर्य के निकलने का स्थान। जापान एशिया के पूर्वी छोर पर है, जिसके कारण वहां से सूर्य सबसे पहले निकलता हुआ दिखाई देता है। तो श्रोताओं, हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। साहित्य में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, भौतिकी में सर सीवी रमन, चिकित्सा में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा, अर्थशास्त्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी, और शांति का नोबेल पुरस्कार श्री कैलाश सत्यार्थी जी। हमारा अगला प्रश्न था कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है, मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा उनके लोकप्रिय राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि परमवीर चक्र पदक का डिजाइन किसने किया था। आइए इसका उत्तर भी जान लेते हैं। परमवीर चक्र पदक का डिजाइन श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर ने तैयार किया था। आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर स्विट्जरलैंड में जन्मी। उनका मूल नाम इवरोन लिंडा था। वहां वे रॉयल मिलिट्री एकेडमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनसे विवाह कर भारत आ गईं। और हमारा अंतिम प्रश्न था श्रोताओं कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका उत्तर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए ये सम्मान मिला। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब बारी है आज के

0: शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। कक्षा तीन की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता का ये एक सुंदर संगीत रूपक है, जिसमें भारत भूमि की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में विद्यमान एकता की भावना का उल्लेख किया गया है। नमस्ते बच्चों।
1: नमस्ते सर।
0: कैसे हैं आप सब?
1: अच्छे हैं।
0: तो बच्चों ये बताओ, आपको कविता पसंद है ना?
2: मुझे अच्छी लगती है।
3: मुझे बहुत पसंद है।
4: मुझे भी पसंद है।
5: मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत अच्छे, मुझे भी कविता बहुत पसंद है। तो बच्चों आज हम एक कविता का पाठ करेंगे।
1: जी सर।
2: मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है।
0: ठीक है,
1: ठीक है।
0: तो बच्चों कविता का शीर्षक है हम अनेक किंतु एक। क्या है शीर्षक?
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो अब बच्चों मैं इसका पाठ करूंगा और आप बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। तो तैयार हैं आप सब?
1: जी सर, तैयार हैं।
0: तो शुरू करते हैं कविता। हैं कई प्रदेश के,
1: हैं कई प्रदेश के,
0: किंतु एक देश के,
1: किंतु एक देश के,
0: विविध रूप रंग हैं,
1: विविध रूप रंग हैं,
0: भारत के अंग हैं,
1: भारत के अंग हैं,
0: भारतीय वेश एक,
1: भारतीय वेश एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: बोलियां हजार हैं,
1: बोलियां हजार हैं,
0: टोलियां हजार हैं,
1: टोलियां हजार हैं,
0: कंठ भी अनेक हैं,
1: कंठ भी अनेक हैं,
0: राग भी अनेक हैं,
1: राग भी अनेक हैं,
0: किंतु गीत बोल एक,
1: किंतु गीत बोल एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: एक मातृभूमि है,
1: एक मातृभूमि है,
0: एक पितृभूमि है,
1: एक पितृभूमि है,
0: एक भारतीय हम,
1: एक भारतीय हम,
0: चल रहे मिला कदम,
1: चल रहे मिला कदम,
0: लक्ष्य के समक्ष एक,
1: लक्ष्य के समक्ष एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो बच्चों कैसी लगी कविता?
1: मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: अच्छी तो लगी। तो अब बताइए, अभी हमने सुना हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के। क्या सुना हमने?
1: हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के।
0: तो अब ये बताइए कि हम किस देश में रहते हैं?
1: भारत।
0: हाँ बच्चों, हमारे देश का नाम है भारत। तो ये तो देश हुआ, लेकिन प्रदेश क्या है?
2: हमारे देश में बहुत से प्रदेश हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो किसी प्रदेश का नाम बताइए।
6: उत्तर प्रदेश में मेरी नानी रहती है। असम में मेरे दादा रहते हैं।
2: और एक और मैं बताऊं, पंजाब।
0: आपको तो भाई बहुत कुछ पता है। बच्चों हमारे देश में कुल 28 प्रदेश या राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो अब जरा बताइए, क्या इसी कविता को गीत में सुनना चाहते हैं?
1: बहुत मजा आएगा।
7: हाँ बहुत मजा आएगा।
0: तो चलिए सुनते हैं ये गीत, हम अनेक किंतु एक। क्या?
1: हम

ये कार्यक्रम आपको जरूर जरूर बहुत पसंद आया होगा, तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। इस सुंदर गीत के बाद आइए अब अंत में सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है राइफलमैन संजय कुमार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में भारत पाक युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के बहादुर और पराक्रमी सैनिक संजय कुमार के शौर्य का वर्णन किया गया है। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: बेटा संजय आप सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है।
1: लेकिन चाचा जी आपकी वो वाली कहानी तो अभी पूरी भी नहीं हुई है।
0: वो वाली कहानी? कौन सी कहानी बेटा?
1: वही जो कल आप सुना रहे थे चाचा जी।
0: अच्छा अच्छा वो सेना वाली कहानी?
1: जी चाचा जी वही सेना वाली कहानी जिसमें आपने बताया था कि जब दुश्मन टैंक लेकर आ रहा था तो आप लोगों ने कैसे उस टैंक को तोप से उड़ा दिया था।
0: अच्छा तो मेरे संजय बेटे को सब याद है?
1: हाँ चाचा जी मुझे सब याद है, लेकिन आपने नहीं बताया था कि बाद में क्या हुआ।
0: क्यों भाई क्यों नहीं बताया था, जरा ये तो हमें बताओ।
1: क्योंकि आपको नींद आ गई थी ना। तो अब आगे बताओ ना चाचा जी क्या हुआ।
0: हाँ तो संजय बेटा उन दिनों मैं सेना में नया नया भर्ती हुआ था।
1: अच्छा।
0: अचानक पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला कर दिया।
1: हमारे देश पर हमला कर दिया?
0: हाँ बेटा, लेकिन दुश्मन को क्या पता था कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमने उनके छक्के छुड़ा दिए छक्के।
2: साथियों ये वार्तालाप था बालक संजय और उसके चाचा के बीच। किसे पता था उन दिनों कि यही बालक अपने युवा होने पर अपने अप्रतिम शौर्य और असाधारण वीरता से इतिहास रच देगा और भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। भारत के रमणीक और सुरम्य पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा गांव है कलोल बकैण। कलकल करती नदियां, ऊंचे पर्वत और यहां की प्राकृतिक छटा सबका मन मोह लेती है।
3: इसी गांव में 3 मार्च 1976 को संजय का जन्म हुआ था। 3 बहनों और 2 भाइयों वाले इस परिवार में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोल से ही पास की। उनका सपना बचपन से ही सेना में जाने का था।
2: मन में सेना में शामिल होने की इच्छा लिए वो दिल्ली आ गए और अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में की। उनके सेना में भर्ती होने के 2 प्रयास विफल रहे, लेकिन तीसरी बार 1996 में उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में प्रतिनियुक्ति मिली।

0: ये बात कारगिल युद्ध से पहले की है। उनके दस्ते को कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में तैनात किया गया था। यह इलाका कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। संजय कुमार के दस्ते को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था। आतंकवाद निवारण अभियान में राइफलमैन संजय कुमार की भूमिका बहुत सराहनीय रही और अपनी यूनिट में वह एक समर्पित और जांबाज सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे।
1: फिर आया 1999 का साल, जिसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता चला। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर सियाचिन, कारगिल, बटालिक, मुश्को, द्रास और काक्सर जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में घुसपैठ करके वहां अपनी चौकियां बना ली थी।
0: ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप था। इस विकट स्थिति का एक ही समाधान था और वो था सैन्य अभियान यानी युद्ध। उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी, जबकि भारतीय सेना ढलानों पर रहने के कारण असुरक्षित थी।
1: 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार को उनकी टुकड़ी के अन्य सदस्यों के साथ मुश्कोह घाटी के पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
0: संजय ने समझ लिया था कि ये युद्ध आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना की उस इलाके में मजबूत पकड़ होने की वजह से ये एक गंभीर हमला साबित होने वाला था।
1: संजय की टुकड़ी ने रात को आक्रमण करने की योजना बनाई। एक प्रकार से ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यही समय है भारत की माटी का ऋण चुकाने का, देश की बलिवेदी पर प्राणों के गरिमामय उत्सर्ग का। फिर क्या था, संजय कुमार ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाल लिया।
2: साथियों, बिल्कुल ठीक है। आप सबको भली भांति पता है कि ये मिशन आसान नहीं होने वाला है। हमें इतना भी नहीं पता है कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं।
3: आपने ठीक कहा संजय भाई, दुश्मनों की स्थिति बेहद मजबूत है।
4: वो ऊंचाइयों पर जमे हुए हैं और बड़ी आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं।
2: तुमने ठीक कहा रामलाल, इसलिए हम रात में आक्रमण करेंगे ताकि दुश्मन को हमारे आने का पता ना चले। हम रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे, छुपते छुपाते, रेंगते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक हमला करें।
3: बिल्कुल ठीक,
5: ये ठीक रहेगा संजय भाई, यही ठीक रहेगा संजय भाई।
2: तो ठीक है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब तक आराम कर लो।
3: ठीक है,
2: फिर हमें मिशन शुरू करना है।
3: राइट, ठीक है संजय भाई, बिल्कुल ठीक। तो शुरू करें?
2: हाँ भाई, लेकिन पहले गले तो मिल रहे पता नहीं फिर जिंदगी हो या ना हो, आगे मुलाकात हो या ना हो।
3: आजा मुकेश, आजा।
1: तो साथियों, 11 सदस्यीय रणबांकुरों की टोली सर पर कफन बांधे अपने सैन्य अभियान में निकल पड़ी। बला की ठंड, साए साए करती ठंडी हवा, निरंतर गिरता तापमान और विरल होती प्राणवायु,
0: सब कुछ विपरीत था। लेकिन बस एक ही बात थी जो विपरीत नहीं थी, और वो था इन महावीरों का अटूट मनोबल। लक्ष्य पर पहुंचे

0: यही थे कि अचानक दुश्मन की ओर से भयंकर फायरिंग होने लगी।
1: शत्रु ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहा था। संजय कुमार की टीम के दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए। और 8 लोग घायल हो गए। फिर भी घायल सैनिकों ने युद्ध करना जारी रखा। राइफलमैन संजय कुमार को ये भान हो गया था कि अब उन्हें देश को अपना सर्वोत्तम देना है।
2: या तो हम मरेंगे या मारेंगे।
3: बिल्कुल ठीक।
2: आंख में आंख डाल के फायर करो। फायर!
0: शत्रु लगातार मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। वो भी डटकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे और अपनी राइफल से दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। इसी बीच उनकी राइफल की गोलियां भी समाप्त हो गई।
2: कार्बाइन खाली हो गई
4: है। क्या होगा? अब क्या होगा? ठहरो ठहरो।
2: राइफल का बट ही काफी है इनके लिए। अटैक करेंगे।
0: वो तनिक भी नहीं घबराए और शेर की भांति निहत्थे शत्रु के बंकर में घुस गए और उन पर टूट पड़े।
1: आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने राइफल की संगीन और बट से 3 शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह एक बंकर का सफाया हो गया। उन्होंने दुश्मन के बंकर से ही एक भरी हुई मशीन गन उठा ली। इसी बीच उनके पैर में 3 गोलियां लगी जिसके कारण उनका चलना फिरना कठिन हो गया। लेकिन उन पर मानो जुनून सवार था। वो चोट की चिंता ना करते हुए उसी जोश से फायरिंग करते हुए दूसरे बंकर की ओर बढ़े।
2: दुर्गा माता जय।
1: और वहां भी दुश्मनों का सफाया कर दिया।
0: उनके रौद्र रूप और जुनून को देखकर दुश्मन के सैनिक भी बौखला गए और भागने लगे।
5: भाग रहे हैं। अब कहां भागते हो? और रुको, ठहरो, हिम्मत है तो सामने आओ। अपने साथियों में से कोई बचकर नहीं भागेगा। मारो।
1: राइफलमैन संजय कुमार के इस अपूर्व शौर्य को देखकर उनके साथी भी चौगुने उत्साह से भर गए और उन्होंने बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिकों का भी सफाया कर दिया। संजय कुमार अभी भी मशीन गन लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन या तो मारे गए थे या भाग चुके थे।
2: भाई जी आप बहुत घायल हो गए, आपको आपको तुरंत उपचार की जरूरत है। वो शाम

0: सोने वाला बंकर बिल्कुल खाली।
1: आपको वहाँ ले चलते हैं।
0: हाँ, है?
1: वहाँ चलते हैं।
0: गर्म पट्टी करवा लीजिए।
1: हाँ,
0: कम से कम खून का बहना रुक जाएगा।
2: आओ भाई, नहीं मानसिंह, नहीं मानसिंह,
0: आओ तो सही।
2: चिंता मत करो, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं तब तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक पॉइंट फ्लैग टॉप पर हमारा पूरा पूरा कब्जा नहीं हो जाता।
0: लेकिन जी, लेकिन
2: मैं मशीन गन साधे यहीं डटा हूँ।
0: अरे
2: आप तुम साथियों के साथ एक एक बंकर को चेक करो।
0: आप सुनो,
2: चुप हुआ ना,
0: आप
2: कोई बचने ना पाए, जाओ चेक करो।
0: लेकिन
2: चेक करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा मुझे।
0: अरे
2: जाओ
0: आप।
3: ऐसा था असाधारण शौर्य राइफलमैन संजय कुमार का। वो तब तक युद्ध के मैदान में अडिग रहे जब तक मुश्कोह घाटी के पॉइंट फ्लैग टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा नहीं हो गया। इसके बाद भारतीय सेना की चिकित्सा प्लाटून वहां पहुंची और घायल संजय कुमार को सैनिक अस्पताल ले जाया गया।
4: NCERT వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది.

0: ఈనాటి వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది.
1: ప్రతి ఇంటా పలకరిస్తున్న ప్రజావాణి ఆకాశవాణి, ప్రతి మనసును మీటే ప్రియవాణి ఆకాశవాణి. మనందరికీ ఎంతగానో చేరువైన ఆకాశవాణి ఇప్పుడు ఒక్క క్లిక్ దూరంలో ఆకాశవాణి.gov.in పై వినండి. సంగీతం, నాటకం, క్రీడా విశేషాలు, విశ్వసనీయమైన వార్తా ప్రసారాలు ఇంకా మరెన్నో నవీన పథంలో నవభారత స్వరం ఆకాశవాణి.
0: ఆకాశవాణి సమయం 1:50 ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार. भारतीय बहरिया ने साहिली और कम गहरे समंदर में सिक्योरिटी खतरात से निपटने की खातिर आपदोशिकन जंगी जहाज INS मंगरोल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है. भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने मुलाकात करने के INDIA ब्लॉक की दरखास्त पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हर भारतीय शहरी के लिए खुले हैं. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इमरजेंसी नाफिज किए जाने के बाद वहां तशद्दुद में तेजी आ गई है और भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है. खबरें तफसील से. भारतीय बहरिया ने आज मुंबई में कम गहरे समंदर के तीसरे आपदोशिकन जंगी जहाज INS मंगरोल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया. इसे कोची के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSN ने तामीर किया है. मुल्क में ही तैयार किए गए इस बहरी जंगी जहाज को शामिल किया जाना साहिली और कम गहराई वाले समंदर में आपदोजों के खतरात का पता लगाने और इसकी रोकथाम के लिए भारतीय बहरिया की सलाहियत को मुस्तहकम बनाने की समत एक अहम कदम है. इसे बाजाबता तौर पर पानी में उतारने की तकरीब की सदारत बहरिया की मगरबी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वत्सायन ने की. इस मौके पर खिताब करते हुए वाइस एडमिरल ने कहा कि इस जंगी जहाज में 80% से ज्यादा साजो सामान अंदरून मुल्क तैयार किया गया है. इससे भारत की इंजीनियरिंग सलाहियत, तकनीकी पेशरफ्त और कौमी अज़्म की अक्कासी होती है. बहरिया की तौसीक को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि 2026 में 10 बहरी जहाज बेड़े में शामिल किए गए हैं और मजीद 8 जंगी जहाजों को जल्द शामिल किए जाने की उम्मीद है. इस बहरी जहाज का नाम मैंग्रोल पर रखा गया है जो गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक साहिली कस्बा और माहीगीरी का एक बड़ा मरकज है. नए बहरी जहाज का डिजाइन मौजूदा बहरी सिक्योरिटी के चैलेंजों की मुनासबत से तैयार किया गया है. INS मंगरोल जदीद तर्ज के हथियारों और सेंसर से आरास्ता है. इनमें हल्के वजन के टोरपेडोज और अंदरून मुल्क तैयार किया गया आपदोशिकन रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं. भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और किसी भी आम शहरी या मुंतखब इदारे के मेंबर की किसी भी दरखास्त का खैर मकदम है. उन्होंने कहा कि हर भारतीय शहरी को अदालत से रुजू करने का हक हासिल है और अदालत उनकी तश्वीश की समाअत करेगी और कानून के तहत जो कुछ भी मुनासिब है राहत फराहम करेगी. नई दिल्ली में कौमी इंसानी हकूक कमीशन के 33वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आईन में हर शहरी से अजमत, वकार, बराबरी, आज़ादी और इंसाफ समेत वसी वादे किए गए हैं. मुलाकात के लिए INDIA ब्लॉक के मुतालबे का तस्करा करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल एक मुरासला मौसूल हुआ था जिसमें मिलने का वक्त मांगा गया था और उन्होंने कल रात इसका जवाब भेज दिया और उनसे मिलने से कासिर रहने की वजह भी बताई.
3: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं. कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे.
2: दिल्ली पुलिस

0: ने सुप्रीम कोर्ट तक अपोजिशन के एहतजाजी मार्च के तनाजुर में दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इधर दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कहा है कि सिक्योरिटी वजूहात से नई दिल्ली में आज 6 मेट्रो स्टेशनों पर दाखिल होने और बाहर निकलने के दरवाजे शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। इनमें पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरिएट और बाराखंबा रोड स्टेशन शामिल हैं। सभी मुतालिका मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेन बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। इधर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी अमन कानून की सूरत हाल के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि मिंटू रोड, मंडी हाउस, गुरु नानक चौक और लोधी रोड फ्लाईओवर समेत मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के मुतासिर रहने का इम्कान है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि बाहम मुनसलिक दुनिया में बैन अक्वामी इश्तराक महज एक सिफारती मुतबादिल नहीं बल्कि ये दुनिया में अमन, सलामती और खुशहाली की एक कलीदी जरूरत है। आज नई दिल्ली में 66वें नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि आलमी इश्तराक मुश्तरक मफादात को तस्लीम करने, इनका एहतराम करने, नीज उन्हें इज्तमाई इकदाम में बदलने पर मबनी है। उन्होंने कहा कि आबो हवा की तब्दीली और दहशतगर्दी जैसे आलमी मसाइल का तकाजा है कि इज्तमाही तौर पर कार्रवाई की जाए। नायब सद ने इस बात को उजागर किया कि वसुधैव कुटुम्बकम सिर्फ भारत का नारा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क में कुदरती आफत या सानहा पेश आने की सूरत में भारत मदद की पेशकश करने वाले अव्वलीन मुल्कों में आगे रहा है। नायब सदर ने कहा कि भारत दूसरों पर गलबा हासिल करने या हुक्म चलाने के लिए नहीं बल्कि इस बात को यकीनी बनाने की खातिर दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क बनने का ख्वाहिशमंद है कि कोई भी मुल्क भारत पर हुक्म न चलाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की खिदमत के तई उनकी लगन और कुर्बानी लोगों को हमेशा तहरीक देती रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि उनके ख्यालात और नजरियात तरक्की याफ्ता भारत बनाने के अज़्म को नई ताकत फराहम करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि गुज़श्ता चंद बरसों से सरकार ने असलाह से लेकर तकनीक, साजो सामान और तरबियत तक सभी शोबों में खुद किफालत हासिल करने और उन्हें जदीद तर्ज पर ढालने पर तवज्जो मरकूज की है। आज नई दिल्ली में भारतीय फौज और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के दरमियान एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने के मौके पर जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब दिफाई साजो सामान का बड़ा हिस्सा मुल्की वसायल से तैयार करता है।
1: हमारे सैनिकों का वेलफेयर हमारे लिए कोई पेरिफेरल इशू नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। और जब हम अपने सैनिकों को अच्छा भोजन, अच्छा इक्विपमेंट, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी सुविधाएं देते हैं तो मैं मानता हूं हम एक तरह से उनके मनोबल को मजबूत करते हैं। और एक मजबूत मनोबल वाला सैनिक ही किसी भी चुनौती का बेधड़क सामना कर सकता है।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में वफाकी हुकूमत के जरिए इमरजेंसी नाफिज करने और जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की सरबराही वाली सूबाई हुकूमत को मुअत्तल किए जाने के बाद तशद्दुद में इजाफा हो गया है। कई इलाकों में पुलिस की जानिब से फायरिंग और गोलाबारी की खबरें हैं। कल सूबे में वफाकी हुकूमत के मुदाखलत के खिलाफ एहतजाज फूट पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के दौरान इस्लामाबाद की जानिब पीटीआई का मनसूबाबंद मार्च में भी रखना पड़ा। खबर है कि पुलिस ने सवाबी जिले में पीटीआई के 59 कारकुनान को जबकि खैबर जिले में 6 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में यह भी कहा गया है कि साबिक वजीर आला सुहेल आफरीदी और पीटीआई के सूबाई सद जुनैद अख्तर को हिरासत में ले लिया गया है। साबिक वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर ने कहा कि उन्हें डेरा इस्माइल खान में घर में कैद करके रखा गया है। अमरीका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ने 4.5 साल से जारी जंग में तवानाई के ठिकानों पर हमलों को रोकने से इत्तेफाक किया है लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में कोई तफसील नहीं बताई। कल रात जनाब ट्रंप की एक मुख्तसर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि जंग बंदी फौरी तौर पर रोक कर दी गई है। अलबत्ता रूस ने इस सिलसिले में कोई फौरी रायजनी नहीं की है। यूक्रेन के सर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों से गुरेज करने को तैयार है। अलबत्ता ज़ेलेंस्की ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि वह ट्रंप के इस ऐलान के बावजूद यूक्रेन की तवानाई से मुतालिक तनसीबात पर हमले जारी रखे हुए है। भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरला और माहे में भी अगले 2 दिन के दौरान इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। उधर आंध्र प्रदेश

देश में अगले दो तीन दिन तक तेज हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारतीय बहरिया ने साहिली और कम गहरे समंदर में सिक्योरिटी खतरा से निपटने की खातिर आपदोशिकन जंगी जहाज INS मंगरोल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा है कि आलमी इश्तराक, मुश्तरका मफादात को तस्लीम करने, इनका एहतराम करने, नीज इन्हें इज्तिमाई इकदाम में बदलने पर मबनी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इमरजेंसी नाफिज किए जाने के बाद वहां तशद्दुद में तेजी आ गई है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि रूस और यूक्रेन ने तवानाई के ठिकानों पर हमले न करने से इत्तेफाक कर लिया है। और भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया आईएनएस मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इनमें अभय हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल है। वाटर जेट प्रोपल्शन वाले 3 डीजल इंजनों से संचालित यह पोत उथले पानी में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। यह पानी के भीतर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और वॉरफेयर से जुड़े अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगरूल समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्धपोतों के साथ मिलकर पनडुब्बी से जुड़े खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
2: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप एमयू की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर

0: स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज दोपहर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, डायवर्जन के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा का दावा है कि 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने अंगोमचा को उनके पद से हटा दिया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी की आलोचना की।
3: स्मैश द पेट्रियार्की का हवाला देने वाले श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, क्या आप अपने इस मौन से बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं, उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करते हैं? अगर स्मैश द पेट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला नहीं है तो बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।
4: I welcome our distinguished participants from friendly foreign countries. This diverse composition provides a unique opportunity for cross-national learning. That is the great importance of this course. Exchange of cross-sectorial perspectives and deeper understanding of national security and strategic issues.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा।

0: रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इससे योग को वैश्विक पहचान मिली और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
2: योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सके और जीत सके। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है।
1: केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थान योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का योग और अध्यात्म से गहरा संबंध है। ऋषिकेश विश्व भर में योग और ध्यान के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हिमालय और गंगा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देश विदेश के लोगों को यहां आकर्षित करती है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उत्तराखंड की समृद्ध योग परंपरा इस संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने की तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30

0: రేపు పగలు 9:10 గౌరవ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రజాపాలనలో 25 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ప్రసారం చేస్తున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమాల ధారావాహిక ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే. 10:03 దేవీ నవరాత్రుల సందర్భంగా ప్రసారం ప్రత్యేక ధారావాహిక దేవీ నీరాజనం 3వ భాగం. 11:03 యువవాణి సంగీత కార్యక్రమంలో రుస్సా ఘోష్ గారి గానం వింటారు. శ్రీ పి మురళి తబలా, శ్రీ అనంత్ న్యాల్కర్ హార్మోనియంపై వాద్య సహకారం. 11:30 సుగమ్ సంగీత్, శ్రీమతి సంగీతా మిత్ర మజుందార్ గారు ఆలపించిన గజల్స్ వింటారు. రేపు 12:10 యువవాణి ఆంగ్ల కార్యక్రమం, 12:40 జాతీయ విద్యా పరిశోధన శిక్షణ సంస్థ ఎన్సీఈఆర్టీ వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం. ఇవి రేపటి మా ప్రసార విశేషాల్లోని ముఖ్యాంశాలు. ఇప్పుడు సమయం 5:50 కావస్తుంది. ఇలాక ఈ ఖబరే ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
1: आदाब, ये आकाशवाणी हैदराबाद है. अब आप फखरुद्दीन के साथ इलाकाई खबरें सुन रहे हैं. पेश है सुर्खियां. दिल्ली पुलिस ने एहतजाज और मुजाहरों के लिए जंतर मंतर को फेहरिस्त से खारिज करते हुए 3 नए मकामात मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए. बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने तनकीद करते हुए कहा कि कोर्ट मार्च के नाम पर धरना देना अदालती निज़ाम को ब्लैकमेल करने के मुतरदिफ है. तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी और असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद ने भारत और जापान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश जाहिर की. और महकमे मौसमियात हैदराबाद ने बताया कि रियासत में रवा माह की 15 तारीख से बाज़ मुकामात पर हल्की से औसत बारिश होने का इम्कान है. और अब खबरें तफसील से. दिल्ली पुलिस ने दारुल हुकूमत दिल्ली में एहतजाज और मुजाहरों के निकात के लिए 3 नए मकामात मुकर्रर किए हैं. अब रामलीला मैदान, बरारी मैदान और मशरिकी दिल्ली में वाक़े CBD ग्राउंड में एहतजाजी मुजाहरों की इजाज़त दी गई है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार की जानिब से जारी करदा अहकाम के मुताबिक जंतर मंतर को एहतजाजी मुकाम की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है. शहरियों के हक एहतजाज को बरकरार रखते हुए मुतबादिल मकाम की निशानदही के लिए मरकजी वजारत दाखिला ने एक कमेटी तश्किल दी थी. उस कमेटी ने यह फैसला लिया है. बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने इल्जाम आयद किया कि कोर्ट मार्च के नाम पर एहतजाजी मुजाहरे करना अदालती निज़ाम को ब्लैकमेल करने के मुतरदिफ है. आज हैदराबाद में वाकई बीजेपी के रियासती दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर की हैसियत से आईनी इदारों पर सियासी हमले करना अफसोसनाक है. डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों से मुलाकात की तजवीज़ पर वजाहत दिए जाने के बावजूद आईनी इदारों को निशाना बनाना दुरुस्त नहीं है. उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि SIR के खिलाफ जहर अफशानी और सुप्रीम कोर्ट के बारे में तबसरा करना गिरती हुई सियासी अकदार की अक्कासी है. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि अवाम के वोट हजफ करने के मकसद से SIR का इस्तेमाल किया

0: जा रहा है। आज नई दिल्ली में सहाफियों से बात करते हुए वज्राला ने कहा कि मुल्क की आजादी की जद्दोजहद में कांग्रेस ने अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दुनिया भर के दौरे करके मुख्तलिफ ममालिक के आइन का मुतालिया किया और तफसीली गौर खौस के बाद हक रायदही को आइन में शामिल किया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी और असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद ने भारत और जापान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के साथ तेलंगाना और हिरोशिमा के दरमियान सनती तकनीकी और तालीमी शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। जापान के हिरोशिमा प्रीफेक्चर असेंबली और नुमाइंदों हुकूमत के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफद ने आज तेलंगाना असेंबली का दौरा किया। इस मौके पर मुनक़िदा खसूसी इजलास से खिताब करते हुए कायदी ने कहा कि जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ असेंबलियों के दरमियान बाहमी ताउन ज़रूरी है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने कहा कि तेलंगाना और जापान के हिरोशिमा के दरमियान सनती सरमायाकारी सनती तरक्की हुनरमंदी के फरोग और रोजगार के शोबों में बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाना चाहिए। आज सेक्रेटरीट में हिरोशिमा हुकूमत के नुमाइंदों के साथ मुनक़िदा इजलास में रियासती वजीर मेहनत वो रोजगार विवेक वेंकट स्वामी ने इफ्तिताही खिताब किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने कहा कि तेलंगाना विजन 2047 के तहत रियासती मैशियत को साल 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना के गवर्नर शिवप्रताप शुक्ला ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के पेश करदा मसावात अदम तशद्दुद और समाजी हम आहंगी जैसे नज़रियात माशरे की तरक्की के लिए मशाले रहे हैं। गवर्नर ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में मुनक़िदा महाराजा अग्रसेन जयंती तकरीब में शिरकत की और खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कारोबार और सनती शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल करने के साथ समाजी खिदमत में भी पेश पेश रहने वाले अग्रवाल बरदरी के किरदार की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के जरिए मुल्क की खिदमत के मंत्र के साथ मुल्क में बेहतर हुक्मरानी और शफाफियत फराहम करने के मकसद से आगे बढ़ रहे हैं। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के उसूलों की रहनुमाई में मरकजी हुकूमत 2047 तक विकसित भारत यानी तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए मुसलसिल कोशिशें कर रही है। इस सिमत में वक्फ बोर्ड के इंतजाम में जामिया तब्दीली लाने के लिए वाज़ह किया गया उम्मीद एक्ट 2025 एक तारीखी फैसला करार दिया जा रहा है। इस खसूसी रिपोर्ट में जायजा लिया गया है कि शफाफ हुक्मरानी और जामिया तरक्की के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का विजन अवाम की जिंदगियों में मतलूबा तब्दीली लाने के लिए किस तरह अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है। वक्फ इमलाक की मिल्कियत और इंतजाम से मुतालिक कई दहाइयों से जारी तनाजात और अवहम को ख़त्म करने के मकसद से मुतारफ कराई गई वक्फ असलाहत 2025 में शफाफियत और समाजी इंसाफ को तरजीह दी गई है। इन असलाहत के तहत वक्फ बोर्ड में खवातीन और पसमानदा तबकात को नुमाइंदगी फराहम करने के साथ डिजिटल निज़ाम के जरिए वक्फ इमलाक को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने का इंतजाम किया गया है, जिससे बेजाबतगियों की रोकथाम में मदद मिलने की तवक्को जाहिर की जा रही है। इस कानून का मकसद वक्फ इमलाक से हासिल होने वाली आमदनी को गरीब मुसलमानों की तालीमी और तिब्बी तरक्की के लिए मौसर इंतजाम में इस्तेमाल करना भी बताया गया है।
1: కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన వక్ఫ్ సంస్కరణలు మన సామాజిక న్యాయానికి పెద్దపీట వేశాయి. కాబట్టి బోర్డులో మహిళలను చోటు కల్పించడం మంచి విషయమే. ఇందులో వెనుకబడిన వర్గాల వారికి ప్రాతినిధ్యం కల్పించడంతో పాటు వక్ఫ్ ఆస్తులు డిజిటల్ పోస్టల్లో
0: मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता 25 सालों से मुसलसिल अवामी खिदमात में मसरूफ हैं और इनकी खिदमात हर पार्टी कारकुन के लिए बाअस तहरीक है। किशन रेड्डी ने हैदराबाद के अंबरपेट में मुनक़िदा सेवा संकल्प अभियान के इजलास में शिरकत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के पेचीदा मसाइल को हल करने और हिंदुस्तान को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशियत बनाने के लिए मजबूत बुनियादें फराहम की हैं। किशन रेड्डी ने इस मौके पर वजीर आजम की तवील अवामी खिदमत को सराहते हुए कहा कि इनका सफर पार्टी कारकुनों के लिए हौसला अफजाई का जरिया है। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने इल्ज़ाम लगाया कि किसान खुश्क साली के बायस परेशान हैं, लेकिन रियासती हुकूमत ने हंगामी काबिना इजलास मनसूख करके वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और विजरा को दिल्ली रवाना कर दिया। బీజేపీ రియాసతీ దఫ్తర్ మీడియా బాత్తే ఖుష్కసాలి సూరతహాల జాయజా లేనే చీఫ్ సెక్రటరీ జానబ్ నోటీస్ భేజా గయాకిన హుకూమీ రామచంద్ర రావు మతాలబాసానోకే ప్రధాన మంత్రి ఫసల బీమా యోజన నాఫిజ్ కీకూమత వాజే కరే రబీ మౌసమ్ కసానో ఆపాషి కే పని జరాత బిజలి కిస్ తర

0: जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत बताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तो कभी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कल होने वाले ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस में आयोजित होने वाले इस फोरम के कारण कल सवेरे 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजन स्थल के आसपास की प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट टी हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Chief Justice of India, Justice Suryakant, has said that the doors of the Supreme Court are open to everyone and any petition from any common citizen or member of an elected body is welcome. He said that every Indian citizen has the right to approach the court and the court will hear their concerns and grant relief for whatever is due under the law. Justice Suryakant made the remarks while addressing the 33rd Foundation Day of NHRC in New Delhi. Responding to the India Bloc's demand for a meeting, Justice Suryakant said he had received a letter yesterday requesting an appointment and had replied last night explaining why he was unable to meet them.
3: The doors of the Supreme Court are open to everyone. Any person, whether an ordinary citizen or a member of an elected body, has the right to approach us. Every citizen of India has this right. We will hear the grievances and address their concerns in accordance with the law and the legal framework. I received the letter yesterday and replied to it last night, and I have cited the reasons for expressing my inability to meet. I have maintained the confidentiality of the letter.
2: The BJP has accused the Congress leader and the leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, of weakening the constitutional institutions and tarnishing the image of the country. Briefing media in New Delhi today, senior BJP leader and party MP Anurag Singh Thakur alleged that whenever the Congress party suffers electoral defeat, it sometimes raises questions on electronic voting machines and sometimes on the Election Commission. Mr. Thakur said that Congress should produce evidence instead of making accusations only. He said Rahul Gandhi also could not submit any evidence when he met President Draupadi Murmu along with the opposition delegation regarding alleged irregularities in special intensive revision. Delhi police has designated 3 new venues for protests and demonstrations.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। नई दिल्ली का जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल

0: कल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अंतर्राष्ट्रीय मरीजों को सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, कीमतों और बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी और चिकित्सा एवं आयुष देखभाल के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई

0: ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समिति गन्ने की कटाई के समय वैज्ञानिक रिकवरी मापदंडों, आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालियों और वजन की सटीकता से संबंधित हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी। समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
3: 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो चुप्पी साध ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि एफडीआई नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
4: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार,

0: बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74% जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
1: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक FDI आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
0: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
2: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है। और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है। और तीसरी बात, हम डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील की दिशा में काम कर रहे हैं जिससे निवेश आसान हो जाएगा, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी।
0: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 3.64% की वृद्धि हुई है। ये मतदाता आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। मराठी की वरिष्ठ अभिनेत्री और लावणी कलाकार मधु कांबीकर का आज पुणे में 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पुणे में किया गया। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज हम बात करेंगे भारत की कर क्रांति, वस्तु और सेवा कर जीएसटी की। साथियों, पहली जुलाई 2017 को वो तारीख थी जब भारत ने आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार देखा। रात 12 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष से एक नारा गूंजा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। जीएसटी से पहले देश में 17 तरह के अलग अलग टैक्स और 23 तरह के सेस लगते थे। हर राज्य की सीमा पर ट्रक घंटों खड़े रहते थे। जीएसटी ने उन सभी सीमाओं को मिटाकर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। तो क्या जीएसटी सच में आम आदमी, व्यापारी और अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है? क्या चुनौतियां अभी भी बाकी हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज के पब्लिक स्पीक कार्यक्रम का विषय है वस्तु और सेवा कर, भारत की कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में वस्तु और सेवा कर नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह। गौरव जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7117-1706 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindiAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो गौरव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक अभी हाल में हुई और उसमें बहुत सारे कर सुधार किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन सुधारों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इनको बहुत बड़ा परिवर्तनकारी गेम चेंजर बताया।
1: जी, इस बार जो 57वीं काउंसिल पे हमारा फोकस था जीएसटी प्रोसेस रिफॉर्म्स पे।
0: जी,
1: 56वीं काउंसिल पे रेट पे फोकस था, 57वीं पे प्रोसेस रिफॉर्म्स पे, जो कि डे टू डे हर बार जैसे कि बिजनेस की लाइफ साइकिल में उसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, रिफंड, लिटिगेशन, वो सब वो करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो वो सारी उसको सारे जो इश्यूज उसको आते हैं उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है।
0: बहुत अच्छा।
1: इसमें
0: तो क्या क्या ऐसे सुधार रहे जिनसे इस जो बैठक थी इसमें क्या ऐसे निर्णय रहे जिससे कि आम व्यापारियों को, आम नागरिकों को लाभ हुआ?
1: जैसे मैं लाइफ साइकिल की बात करता हूं तो पहली चीज थी रजिस्ट्रेशन।
0: जी,
1: जब वो अप्लाई करता है तो अक्सर उसे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है।
0: जी,
1: तो उसे हमने सरल किया, न सिर्फ उसके लिए अधिकारी के लिए एक इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं पर हमने फॉर्म भी अपना चेंज किया।
0: जी,
1: फॉर्म में जो उसको डॉक्यूमेंट देने हैं वो फॉर्म में ही ड्रॉप डाउन से हमने कर दिए।
0: जी,
1: तो उससे ये हो जाएगा कि उसको पता है कि क्या देना है, क्या
0: आसान हो गया।
1: कई चीज जहां पर वो सिस्टम रिस्क टू रेवेन्यू नहीं है कि वो रेवेन्यू को इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां हमने ऑटोमेट कर दिया है। वो खुद डिक्लेयर करेगा और वो खुद ही हमारा सिस्टम उसे एक्सेप्ट कर लेगा।
0: जी,
1: सो एक ट्रस्ट दी टैक्स पेयर का हमारा वो हमने एक शुरू किया है।
0: जी, इसके अलावा अलग अलग लोगों के लिए इस जो सुधार हुए हैं 57वीं परिषद में, इसमें क्या क्या ऐसे सुधार हुए जो अलग अलग लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं?
1: जैसे एक्सपोर्टर्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल।
0: जी,
1: एक्सपोर्टर्स को रिफंड

0: अप्लाई करना पड़ता था, रिफंड अप्लाई करता है तो वो अधिकारी के पास जाता है, उसमें समय लगता है अधिकारी को। अब जो है आगे चल के हम रिफंड को ऑटोमेट कर देंगे। अगर वो लो रिस्क है, सिस्टम ने देखा रिस्क है, लो रिस्क है, तो उसको 100% रिफंड एक्सपोर्टर को तुरंत सिस्टम से मिल जाएगा।
1: वेरी गुड,
0: तो वो उससे बहुत जो अभी 60 दिन लगते थे वो होके 1 दिन 2 दिन में वो खत्म हो जाएगा।
1: बहुत बड़ी सुविधा
0: बड़ी सुविधा
1: जी।
0: ऐसी कैश लेजर का रिफंड होता है। छोटा व्यापारी ईसीओ से सप्लाई करता है, ये जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं वो
1: जी
0: करता है, वो अपना रिफंड अप्लाई करेगा तुरंत हाथों हाथ उसे रिफंड हो जाएगा, और ये 1 नवंबर से ही हो जाएगा चालू।
1: जी
0: सो ऐसी कई चीज़ें हैं छोटे व्यापारी एक्सपोर्टर्स या जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, की इनपुट का रेट ज़्यादा है आउटपुट का कम है, तो उसका रिफंड भी हमने ऑटोमेट कर दिया। 90% रिफंड उसको अप्लाई करने के 10 दिन में शुरू में, आगे चल के वो इमीडिएट जब सिस्टम रेडी हो जाएगा तो हाथों हाथ मिल जाएगा,
1: बहुत बड़ी
0: तो
1: सुविधा
0: उससे बहुत आराम हो जाएगा
1: जी।
0: व्यापारियों को।
1: और इसके अलावा कुछ सजा के प्रावधान हुआ करते थे, टैक्स समय पे नहीं भर पाए या कुछ तो इस तरह से उनमें भी काफी कुछ परिवर्तन हुआ है
0: जी, अरेस्ट को बिल्कुल हटा दिया गया जीएसटी से,
1: जी।
0: तो आगे चल के जब लॉ चेंज हो जाएगा तो कोई अरेस्ट जीएसटी में अधिकारी अरेस्ट नहीं कर पाएगा किसी को। दूसरा, हमने प्रोसिक्यूशन जो कोर्ट में जहाँ हम अपील फाइल करते हैं किसी के अगेंस्ट वो करने को,
1: जी
0: तो उसके भी हमने कई कान जो जहाँ पर लिटिक वो इंटरप्रिटेशन इश्यूज आ सकते हैं वो हमने हटा दिए हैं, तो आगे चल के प्रोसिक्यूशन में आदमी को ये तकलीफ नहीं होगी गलत इंटरप्रिटेशन गलती हो गई और मुझे कोर्ट में उन्होंने वो कर दिया, फौजदारी का मुकदमा कर दिया,
1: तो
0: वो चीज़
1: मुकदमेबाजी से अब छूट मिल
0: छूट
1: गई
0: मिल जाएगी।
1: जी। और हमारे श्रोता हमसे जुड़ने लगे हैं, पहले श्रोता हरिद्वार से हैं रवि जवालिया। रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका
2: नमस्कार सर जी,
1: जी, पूछिए
2: सर्दी
1: सवाल
2: विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
1: जी।
0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: जी,
1: जी
2: सबसे पहले मैं सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, आगामी सभी पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और अभी हाल ही में जो दिवंगत अभिनेता श्री नाना पाटेकर जी उनका श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जी।
1: रवि जी अपना सवाल पूछें।
2: हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ सर, अब की बार जो 57वीं बैठक हुई है उसमें क्या क्या कर सुधार हुए हैं, और सर मैं जानना चाहता हूँ कि अब की बार अरेस्ट से किस किस सजा को हटा दिया गया है, ये मेरा सवाल रहेगा सर।
0: अरेस्ट बिल्कुल ही खत्म कर दी गई है, किसी भी ऑफेंस के लिए अरेस्ट का पावर नहीं रखी रही है जीएसटी में। सो आगे चल के कोई भी ऐसा वो नहीं है ऑफेंस जिसके जिस पे आपको अरेस्ट जिसको किसी को अरेस्ट किया जा सके।
1: तो आम तौर पे ऐसा माना जाता था कि अगर समय पे कर नहीं चुकाया या कम कर चुकाया या और भी कोई हुई तो गिरफ्तारी की जो तलवार लटका करती थी वो पूरी तरह से समाप्त हो
0: जी
1: गई। गौरव जी आपसे जानना चाहेंगे, 1 जुलाई 2017 से पहले भारत में जो कर प्रणाली थी
0: जी
1: कैसी थी और उससे जीएसटी ने उसको किस तरह से चेंज किया?
0: जीएसटी के आने से पहले 17 कुछ कर थे जो
1: जी
0: जीएसटी ने अपने में समेट लिए हैं। उसमें एक व्यापारी को, एक बिजनेसमैन को सेंट्रल एक्साइज का रजिस्ट्रेशन, केंद्रीय उत्पाद कर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था,
1: जी
0: वो एक अलग, उसको रिटर्न फाइल करना अलग कंप्लायंस था, वैट का रजिस्ट्रेशन लेता था वैट का अलग कंप्लायंस था, एक स्टेट में ही उसका दायरा था, तो एक
1: जी
0: स्टेट में ही उसका क्रेडिट था और एक स्टेट में ही सब था। जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट कर भेजता था अपना सामान बेचता था तो उसे क्रेडिट नहीं मिलता था,
1: जी
0: तो जीएसटी ने क्या किया, ये जो जित और अलग अलग टैक्स ऐसे ही करके कुछ 17 टैक्सेस में वो रजिस्टर्ड था, जीएसटी ने वो खत्म करके एक टैक्स ले लिया है, प्लस एक पूरा देश एक ही उसमें कर दिया है, तो वन नेशन वन टैक्स का अर्थ है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट कहीं भी वो देश में व्यापार करे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये नहीं रहेगा कि मैं इस स्टेट में नहीं हूँ,
1: जी
0: तो जीएसटी ने उसे हर स्टेट में एक उसको एक जैसा कर दिया, उसके लिए पूरा देश उसके लिए एक मार्केट हो गया है
1: तो कुल मिला के वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का जो जीएसटी का नारा था
0: जी,
1: वो कितना सफल हो सका है?
0: काफी हो गए, बहुत सफल हुआ है। अगर आप देखिए जीएसटी में जब हम जीएसटी स्टार्ट हुआ था तो 56-66 लाख हमारे टैक्स पेयर्स थे, करदाता थे,
1: जी
0: अब वो 1,70,00,000 हो गए हैं 9 साल में।
1: लगभग 3 गुना से भी
0: जी
1: अधिक हो गए
0: जी तो
1: जी।
0: जो कितने नए व्यापार आए जो जीएसटी में आ गए, कितने छोटे व्यापारी जो हो सकता है टर्नओवर जो हमारा थ्रेशोल्ड है 40 लाख और 20 लाख उससे नीचे हैं, वो भी जीएसटी में आ रहे हैं क्योंकि जीएसटी का उन्हें फायदा दिख रहा है,
1: लाभ मिल रहा
0: लाभ
1: है
0: मिल
1: जी
0: रहा है।
1: जी और एक और श्रोता हमारे साथ हरियाणा के हिसार से जुड़ गए हैं, राजेंद्र। राजेंद्र जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका?
3: नमस्कार नमस्कार जी मुकेश जी और
1: नमस्कार।
3: विशेषज्ञ।

0: नमस्कार
1: जी,
0: जी, सवाल
1: तो
0: पूछिए।
1: जो एक विकील शुक्ला जी उनके बारे में बता रहे थे, तो उनका मैं भी उनके सुन के बड़ा अफसोस हुआ है। तो मैं उनको भगवान को उनको आत्मा को शांति दे।
0: जी
1: और
0: राजी,
1: सवाल ये था जी, जब जीएसटी की बैठक होने को होती है तो कभी काफी मार्केट में रेट जो सामान के वो बढ़ जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले बैठक होनी थी, उसके बाद सामान के कुछ रेट बढ़ जाते थे, इसके बारे में जीएसटी विभाग क्या करता है, इसके बारे में जानना। नमस्कार।
0: देखिए, जीएसटी विभाग तो रेट नहीं वो डिसाइड करता, वो तो मार्केट डिसाइड करता है। पर ये स्पेकुलेशन की होता है कि लोगों ने अपने की अंदेशा किया कि रेट घट सकता है या बढ़ सकता है, तो लोग अपना वो कर देते हैं। परंतु इस पे जीएसटी विभाग कुछ नहीं वो कर सकता है। जीएसटी विभाग रेट्स डिसाइड नहीं करता, वो मार्केट करता है।
2: तो कुल मिला के जीएसटी डिपार्टमेंट की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो केवल मार्केट में ही होता है और दुकानदार या जो भी उत्पादक हैं वो अपना
0: जी
2: रेट बढ़ा देते हैं। गौरव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जीएसटी आने के बाद आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई पर क्या असर पड़ा है?
0: कि जीएसटी की खासतौर पे 56वीं काउंसिल जो पिछली काउंसिल हुई थी इससे
2: जी
0: पहले सितंबर 2025 में, उसमें हमने 4 से 2 रेट कर दिए। 5% और 18% का रेट रहा, 12 और 40% का रेट
2: समाप्त कर दिया।
0: समाप्त कर दिया। सो रेट इसलिए किया गया, और फिर सरकार ने ये भी वो कोशिश की कि वो बेनिफिट जो है, लाभ है, वो ग्राहकों को पहुंचा जाए,
2: जी
0: कि व्यापारी खुद ना रख लें रेट कम का लाभ। लाभ वो जी गवर्नमेंट ने फॉलोअप किया, गवर्नमेंट ने कम कंज्यूमर हेल्पलाइन भी बनाई कि व्यापारी कि ग्राहक अपनी समस्या बता सकें, रेट कोई पास ऑन नहीं कर रहा है।
2: जी
0: सो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इंश्योर किया कि जब भी रेट कट हो रहा है वो रेट कट ट्रांसफर होता है कस्टमर को।
2: जी बिल्कुल। और एक और चीज यहां पर आ रही थी कि जीएसटी का लाभ जो पिछली 56वीं काउंसिल में जो हुआ था, बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ। कितने लोगों ने खरीदारी की कारों पर और दूसरे वाहनों पर, इसके अलावा टीवी, फ्रिज, इन सब पे कितनी सारी फायदा हुआ था।
0: जी, अगर आप देखिए हमारा रेवेन्यू, हमने रेट कम किया पर हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। अब
2: जी
0: हमारा ऐसा रेवेन्यू आ गया कि हम 2 लाख करोड़ से कम आता है, तो हमें महीने का तो लगता है कि कम आया इस बार रेवेन्यू। तो
2: बिल्कुल,
0: जी, तो क्या हुआ है, रेट कम होने से लोगों की खरीदारी बढ़ गई, जिसकी वजह से रेवेन्यू वो
2: परचेज पावर बढ़ी,
0: परचेज
2: उससे रेवेन्यू बढ़ा।
0: बढ़ा।
2: जी बिल्कुल।
0: जी
2: और इसके अलावा एक और चीज जानना चाहेंगे कि बहुत सारे, जब 56वीं काउंसिल की बैठक हुई थी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिन पर जीएसटी बिल्कुल जीरो कर दिया गया,
0: जी
2: वो ऐसा ये किस तरह के प्रोडक्ट्स थे जिन पे जीरो
0: जनरली
2: हुआ?
0: फूड आइटम्स थे,
2: जी
0: जो कि खाने पीने की लोगों की वो चीजें थी, उसको उस पे 5 से 0 कर दिया गया रेट। दवाइयों पे, लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है, जीवन रक्षक दवाइयां
2: दवाएं,
0: हैं,
2: जी
0: उन पे हमने 5 से 0, काउंसिल के रिकमेंडेशन से 5 से 0 हुआ, ताकि लोगों को फायदा हो जाए। उसके साथ स्टेशनरी की चीज, स्टेशनरी जो बच्चे स्कूल रहते हैं, स्कूल की पेंसिल, वो
2: पेंसिल, रबड़
0: स्टेशनरी,
2: वगैरह। हाँ
0: कॉपी,
2: यस,
0: नोटबुक, उन सब का दाम जीरो कर दिया, कि क्योंकि आगे चलते, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई के लिए जरूरी था, इसलिए सरकार काउंसिल ने डिसाइड किया कि उनके रेट्स जीरो कर दिए
2: कुल
0: जाते
2: मिला
0: हैं।
2: के आम लोगों के लिए उसमें काफी ऐसे लाभदायक निर्णय थे जो उनको फायदा
0: जी
2: पहुंचाया। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, एनपी सिंह। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत सवाल है आपका।
3: सभी पैनलिस्ट को नमस्कार।
0: नमस्कार
3: सर, जब जीएसटी लागू हुआ था तो हमें प्रॉमिस किया गया था कि इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। मेरे 2 क्वेश्चन है
2: जी, बोलिए।
3: सर। पहली बात तो ये है कि अगर वो कोई जीएसटी अधिकारी सरप्राइज विजिट पे आ जाता है
2: जी
3: तो क्या उससे क्या चीज मांगी जाए जिससे वो पता लगे कि हाँ ये वाकई में हमारे पास इसी चीज के लिए आया है।
2: जी
3: और दूसरा मेरा एक बड़ा सरल सा बड़ा मतलब आंसर आपसे लेना चाहता हूँ कि हमारा इंटरेस्ट रेट सारा परचेज है।
2: जी
3: जैसे हमारी पंजाब से आती है दिल्ली के लिए तो हमारे पास आईजीएसटी तो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है,
2: जी
3: लेकिन जब हम इधर सेल करते हैं लोकल करते हैं तो आधा आईजीएसटी आधा सीजीएसटी हो जाता है। तो आईजीएसटी इकट्ठा है तो वो हमें जब 1 साल के बाद हमें जो बच जाता है वो रिफंड मिलना चाहिए।
2: जी
3: ये 2 क्वेश्चन है सर।
0: जी पहला जो सवाल है अधिकारी वाला, अधिकारी जब आपके पास आता है तो वो एक ऑथराइजेशन, एक उसे एक ऊपर अपने अधिकारी से, जॉइंट कमिश्नर रैंक के अधिक संयुक्त आयुक्त रैंक के अधिकारी से उसको एक अप्रूवल चाहिए होता है। वो एक चिट्ठी लेकर आएगा, उस लेटर पे DIN होता है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को आप CBIC वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, सही में अधिकारी ने इशू किया है कि ये ऐसे ही इसने खुद बनाया हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जब अधिकारी आए उससे पूछिए आपको क्या कोई परमिशन है आपके पास आने की, वो देखिए आप, उसका आई कार्ड चेक करिए,

0: कि वो एक सही में अधिकारी है कि नहीं, आई कार्ड चेक कीजिए, उसकी परमिशन देखिए, फिर उसमें एक डिन नंबर होगा, DIN, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको चेक करिए। CBIC की वेबसाइट पे हमने लिंक दिया हुआ है, आप गूगल करेंगे DIN तो आपको आ जाएगा, वहाँ चेक करिए कि सही में वो अधिकारी है कि नहीं। जो आपका दूसरा सवाल है, IGST क्रेडिट आएगा, तो IGST क्रेडिट और आपकी लोकल सप्लाई है दिल्ली में, पंजाब से आपके पास आ रहा है IGST का, आप पेड आपके पास इनपुट आ रहे हैं, तो उसको आप IGST को यूज़ कर सकते हैं, CGST SGST अपना टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना IGST क्रेडिट को यूज़ करिए, CGST SGST क्रेडिट जो दिल्ली में आप लोकल सप्लाई कर रहे हैं।
1: मुझे लगता है कि ये जवाब उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा और उनकी जो क्वेरी थी वो पूरी हो गई होगी। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं थाने से, महाराष्ट्र के थाने से, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका?
2: जी सर, नमस्कार
1: जी। नमस्कार
2: सर, मुझे पूछना था, मतलब जो स्टेट के जो छोटे मोटे समझो जो टैक्स थे वो खत्म करके एक ही बना दिया, तो जो मतलब ये जो GST सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, मतलब उनके इसमें, तो ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट को मतलब ये महीने का महीने या साल भर में मतलब इनको कैसे फंडिंग किया जाता है? और बहुत से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो कंप्लेंट रहता है कि टाइम पे मिलता नहीं है, और मतलब किस किस स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना है, मतलब कैसे तय होता है, जो थोड़ा बताइए।
0: जैसे गुरुनाथ जी, आपने महाराष्ट्र में कोई चीज़ खरीदी, आप महाराष्ट्र में ही, आप थाने में जाके किसी दुकान से आपने चीज़ खरीदी, तो अगर आप बिल देखें तो उसमें उस चीज़ की वैल्यू कितनी रहेगी, उस पर CGST और SGST सीधे दिखेगा कितना। मान लीजिए उस पर 5% टैक्स है, 2.5% CGST, ढाई प्रतिशत स्टेट GST आपको दिखेगा, तो वो जो स्टेट GST है वो सीधे GST स्टेट को जाता है। दूसरा है, जैसे आपसे पहले जिन्होंने सवाल पूछा था, पंजाब से उनको दिल्ली में आया, तो पंजाब से दिल्ली में आया तो वो इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, एक स्टेट से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य में हो गया। अब क्या होगा कि जब वो दिल्ली में आया उनके पास, या आपके पास, मान लीजिए आप ही कोई चीज़ दिल्ली से लेते हैं, दिल्ली से महाराष्ट्र में लेते हैं, तो आपके पास महाराष्ट्र में आया तो उस चीज़ का कंजम्पशन महाराष्ट्र में हो रहा है, आप उस चीज़ को ही उपयोग आप महाराष्ट्र में कर रहे हो, तो उसका जो GST रेवेन्यू, जो भी GST है उस चीज़ पे, उसमें 50% वो स्टेट को सेटल होता है। जो वो स्टेट्स का इशू है वो सेटलमेंट वाला इशू है, क्योंकि उसमें कई सारी सप्लाई का पता नहीं रहता, क्योंकि सही से डिक्लेयर नहीं होता, टैक्स पेयर ने अगर सही से डिक्लेयर नहीं किया तो फिर उसमें वो डिस्प्यूट आता है कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। पर आगे चल के जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है जो सेटलमेंट देखता है, और GSTN जो सेटलमेंट का सिस्टम वाला सेटलमेंट देखता है, दोनों लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया है और कई एक SOP बनाया है ताकि आगे चल के हम इसको हम आगे चल के इसको सुधार सकें, ताकि ये सेटलमेंट वाला जो इशू है, जो राज्य का पैसा है, वो इशू रिजॉल्व हो सके।
1: तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम वस्तु और सेवा कर भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में वस्तु और सेवा कर नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह जी। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये हैं मनोज। मनोज ने सवाल किया है कि GST क्या छोटे व्यापारियों के लिए जरूरी है, और GST को साल में कितने बार भरना होता है?
0: GST, देखिए GST में एक थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन है, एक लिमिट है, उसके नीचे हैं आप तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं है, आप ले सकते हैं चाहें तो, पर आपके लिए अनिवार्य नहीं है। वो है 40 लाख रुपए अगर आप गुड्स पे डील करते हैं, माल में वो करते हैं, और सेवा में करते हैं तो 20 लाख रुपए आपकी वो थ्रेशोल्ड है। छोटे व्यापारी अगर उससे नीचे हैं तो उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन, पर वो लेना चाहे तो ले सकता है। लेने से ये फ़ायदा है क्योंकि उसको जितना उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसका उसे इनपुट, वो जो भी उसने चीज़ें खरीदारी की उस पर टैक्स पे किया, उस टैक्स का वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर अपनी आगे की GST जो पे करना है उसमें वो यूज़ कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है उस क्रेडिट को।
1: बिल्कुल।
0: रिटर्न्स हैं GST में, आपके पास हर महीने एक रिटर्न होता है, क्योंकि आप जो रिटर्न फाइल करते हैं उसका, वो किसी से आप टैक्स सप्लाई करते हैं, उसे टैक्स लेते हैं, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जो आपसे सामान खरीदता है। पर GST में छोटे व्यापारी के लिए जिसका 5 करोड़ तक टर्नओवर है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम है, जहां वो 3 महीने में एक बार एक रिटर्न फाइल करेगा पर मंथली टैक्स अपना पे करेगा, दूसरा इस काउंसिल में एक कॉन्सेप्ट नेट को मंजूर

0: मंजूरी मिली है काउंसिल से, जिस पे अभी काम करके अगली काउंसिल में हम उसके वो डिटेल्स लेकर जाएंगे कि कैसे करना है। उसमें प्रपोजल था कि एनुअल रिटर्न, मतलब साल में एक रिटर्न फाइल करेगा और क्वार्टरली 3 महीने में एक पेमेंट करेगा। तो अभी जो 12 साल में हर महीने रिटर्न फाइल कर रहा है उसकी जगह साल में एक करेगा, और जो हर महीने पेमेंट कर रहा है उसका 3 महीने में एक बार पेमेंट करेंगे। तो उससे काफ़ी सरल हो जाएगा रिटर्न, छोटे व्यापारी के लिए रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिमला से राकेश। राकेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि हम दुकानदार से सामान लेते हैं
1: जी,
2: तो हमें GST देना पड़ता है, तो अब हमें ये पता कहाँ कैसे चलता है कि दुकानदार हमें GST रेट पे दे रहा है, हमें पता कैसे चलता है कि कितना GST हमें हमसे लिया जा रहा है।
0: देखिए, अगर आप बिल देखें, जब दुकानदार को जब आपको चीज़ बेचता है उसे बिल देना अनिवार्य है, तो बिल देता है, बिल में आपको

0: में जीएसटी रेट पे दे रहा है, हमें पता कैसे चलता कि कितना जीएसटी हमें हमसे लिया जा रहा है?
1: देखिए, अगर आप बिल देखें, जब दुकानदार आपको दुकानदार को जब आपको चीज़ बेचता है उसे बिल देना अनिवार्य है, तो बिल देता है, बिल में आपको चीज़ की उस वस्तु की वैल्यू जो होगी वो मूल्य बताएगा, मूल्य के ऊपर जीएसटी रेट। अगर कोई चीज़ आप लेते हैं इस पर 18% जीएसटी है, तो 9% CGST और 9% SGST दिखाएगा, तो आपको उसमें क्लियरली दिखेगा आपकी जो इनवॉइस है रसीद में कि उसमें जीएसटी कितना उसने आपसे चार्ज किया है और कितना एग्जैक्टली उसकी कितना वैल्यू था, कितना रेट था, वो सब उस रसीद पे लिखा रहेगा।
2: गौरव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधों को कैसे बदला है? क्या ये सच है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये उदाहरण है?
1: जी, जीएसटी आप सोचिए, एक कानून है जो कि हर स्टेट अलग से अपना अपना वैट चलाता था, उससे पहले सेल्स टैक्स था,
2: जी
1: कानून एक ही था पर सब स्टेट्स अपना अपना अलग एडमिनिस्टर करते थे, सेंटर अपना अलग करता था। जीएसटी में सबने अपनी पावर्स वो दी, सबने एक साथ बैठ के हर निर्णय एक साथ होता है। आप सोचिए, 57 में मीटिंग्स हो गई, 57 मीटिंग्स में, काउंसिल मीटिंग्स में सिर्फ एक बार वोटिंग हुई लॉटरी पे,
2: जी
1: वरना कभी वोटिंग नहीं होती। हर निर्णय कंसेंसस
2: सर्वसम्मति से होता है।
1: सर्वसम्मति से होता है, कंसेंसस से होता है, जहाँ हर हर स्टेट अपनी बात रखता है, हर स्टेट को अपना बात बोलने का मौका मिलता है। वहाँ तो यहाँ तक कि जब काउंसिल से पहले मीटिंग्स होती हैं कमेटी की, उसमें भी स्टेट के मेंबर्स होते हैं,
2: जी
1: तो उसमें भी स्टेट्स अपने अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपने विचार रखते हैं, उसके बाद ही सर्वसम्मति से काउंसिल में जाता है। तो काउंसिल का एक सबसे बड़ा वो है कि एक साथ बैठ के एक चीज़ पे डिसाइड करना, एक चीज़ पे सर्वसम्मति से डिसाइड करना, वो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जीएसटी का अनुभव सबसे अच्छा योगदान है।
2: सबसे बड़ा योगदान ये रहा, और इसके अलावा छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए जीएसटी वरदान साबित हुआ है।
1: जीएसटी ने छोटे व्यापारी के लिए, खासतौर पे छोटे व्यापारी का कंप्लायंस आसान कर दिया। हम
2: जी
1: जीएसटी में उसको पता है कि जितना उसने टैक्स दिया है उसका वो इनपुट टैक्स रेट लेकर अपना आगे कर भुगतान कर सकता है। छोटा व्यापारी जो ईसीओ के माध्यम से अपना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से अपना सामान बेचना चाहता है देश में, पर उसके लिए हमने और इस बार बहुत सरल कर दिया, वो ईसीओ का जो वेयर हाउस है, गोडाउन है,
2: जी
1: उसे अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वो कर सकता है उस स्टेट में जहाँ पर उसके खुद का ऑफिस नहीं है। तो उससे उसे क्या होगा, वो आराम से रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली ले लेगा और अपना अपना कर भुगतान कर पा अपना सप्लाई करेगा और सप्लाई कर भुगतान आराम से कर पाएगा। तो जीएसटी ने उसको एक बड़ा आसान तरीका दे दिया है अपना व्यापार स्टेट से बढ़ा के पूरा देश में उसे करने का, वन नेशन वन टैक्स के तरह।
2: एक और चीज पूछना चाहेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है यहां दिल्ली में थोक मार्केट से कुछ सामान खरीदता है और वो सप्लाई करता है कुछ जगहों पर, क्या उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है?
1: अगर उसका 40 करोड़ से 40 लाख
2: लाख
1: से
2: से
1: ऊपर थ्रेशोल्ड से उसका टर्नओवर
2: बिक्री हो जाती है।
1: बिक्री अगर साल की 40 लाख से ऊपर है तो उसको करना अनिवार्य है।
2: जी, और उसको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा,
1: जी,
2: जब अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो रिटर्न फाइल भी करना पड़ेगा।
1: जी, पर अगर आप देखें उसको, उसने जब चीज खरीदी तो उस पर उसने टैक्स पे किया,
2: जी
1: उसके लिए अच्छा है वो रजिस्ट्रेशन ले ले ताकि उसका वो इनपुट टैक्स रेट लेकर अपना कर भुगतान कर दे, और वो जो टैक्स उसने सामान लेते हुए खरीदा है उसमें उसको
2: वो उसके
1: इस्तेमाल कर
2: खाते में आ जाएगा।
1: खाते में आ जाएगा, तो उसको लाभ है उस जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेकर। अगर नहीं लेगा तो पूरा वाला टैक्स जो उसने पूरा
2: वो
1: इनपुट के
2: सारा
1: लिए
2: बेकार चला
1: वो
2: जाएगा।
1: सारा बेकार चला गया वो।
2: जी बिल्कुल। और एक और चीज यहां पर जानना चाहेंगे, नए स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को जीएसटी को लेकर आपकी क्या सलाह है?
1: नए स्टार्टअप्स के लिए जीएसटी, पहला तो रजिस्ट्रेशन सरल होना है,
2: जी
1: रजिस्ट्रेशन हमने सरल कर दिया उसके लिए, हमारे जीएसटी सिस्टम में आना उसके लिए बहुत आसान कर दिया इस काउंसिल के बाद। दूसरा, अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो उसका रिफंड हमने सरल कर दिया,
2: जी
1: रिटर्न उसका टर्नओवर कम है तो रिटर्न्स हमने उसके लिए कम कर दिए,
2: लिमिटेड कर दिए।
1: लिमिटेड रिटर्न्स हो गए, एक टर्नओवर से नीचे रहेगा। देन उसका जो लिटिगेशन, मान लीजिए डिस्प्यूट होता है कोई टैक्स का कुछ होता है, तो उसके लिए हमने प्रोसेस बड़ी स्ट्रीमलाइन कर दी, ₹10,000 से कम का नोटिस नहीं देंगे उसको,
2: जी
1: तो छोटे अमाउंट के नोटिस कम हो गए उसके लिए। जो लिटिगेशन प्रक्रिया है उसके लिए हमने एक इशू किया है, पूरा एक सर्कुलर इशू करने जा रहे हैं कि कैसे करना है, तो एक ट्रस्ट रहेगा सिस्टम पे उसे कि जो हो रहा है सही हो रहा है मेरे साथ।
2: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से रामाशंकर वाजपेयी जी। रामाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता था कि जीएसटी में कटे हुए पैसा अगर कहीं गलत हाथों या गलत उससे जाता है तो हम उसकी शिकायत कहाँ करें?

0: देखिए, जीएसटी में अगर आपको लग रहा है कहीं चोरी हो रही है, कहीं बेईमानी हो रही है, तो आप अपने एक अपने अगर डीजीजीआई को बोल सकते हैं। डीजीजीआई जो है हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, जो केंद्र सरकार का सीबीआईसी का इंटेलिजेंस विभाग है, उसमें शिकायत कर सकते हैं। आप लोकल कमिश्नरेट में कर सकते हैं शिकायत कि ऐसा हो रहा है चोरी, एंड वो लोग उसको फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उसमें आगे क्या क्या कैसे कार्रवाई की जाए। तो ऐसे करके आप शिकायत बता करके अपना वो बता सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारा एक और सवाल आपसे है, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट और ई वे बिल से व्यापार करना अब कितना आसान हुआ है?
0: ई वे बिल हर एक ट्रांसपोर्टेशन में, जब 50,000 से ऊपर का सामान एक ट्रांसपोर्टेशन ट्रक में जाता है,
1: जी
0: सो ई वे बिल अनिवार्य है। ई वे बिल में शिकायतें आती थी कि चेकिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा उसमें डिले होता है, हैरासमेंट होता है। तो इस काउंसिल ने इस बार देखा इसको, इशू को। अब क्या काउंसिल ने किया है, ट्रांजिट स्टेट में, मान लीजिए दिल्ली से सामान जा रहा है केरला,
1: जी
0: बीच में ही उत्तर प्रदेश, मध्य
1: कई
0: प्रदेश,
1: सारे स्टेट
0: कई
1: आ गए,
0: स्टेट पड़े, तो कोई सिर्फ दिल्ली और केरल ही उसे चेक कर पाएंगे, बीच वाले
1: बीच में कोई चेक नहीं कर
0: कोई चेक
1: सकता।
0: नहीं कर। तो
1: बहुत बड़ी
0: ये
1: सुविधा,
0: बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा तकलीफ थी ट्रांसपोर्टर्स के लिए और ट्रेड छोटे व्यापारियों के लिए, कि कोई भी चेक कर लेता था और फिर वो डिले होता है, समय लगता था चेकिंग
1: बिल्कुल
0: में और सब में। तो वो चीज़ बंद कर दी इस बार काउंसिल ने। और सिर्फ आप ऐसे नहीं कर सकते कि सड़क पे खड़े होकर जो आ रहा है उसे चेक करेंगे। अब आपको बड़ी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस चाहिए कि इस ट्रक में चोरी है, आपके पास पहले इंटेलिजेंस होनी चाहिए, संयुक्त आयुक्त रैंक के ऑफिसर के अप्रूवल चाहिए आपको, कि वो अप्रूव करेंगे तभी आप जा सकते हैं। आपके पास क्लियर इंटेलिजेंस होनी चाहिए यही ट्रक में चोरी है,
1: जी।
0: तो उससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा ई वे बिल की उसमें।
1: गौरव जी, एक और सवाल आपसे है कि क्या लगता है कि जीएसटी ने भारत को विदेशी निवेश के लिए ज्यादा आकर्षक बनाया है?
0: जी, जीएसटी ने एक सर्टेनिटी दिलाई है विदेशी निवेशकों को कि जीएसटी है तो पूरे देश में एक ही टैक्स है,
1: जी
0: अलग अलग इंटरप्रिटेशन नहीं होंगे। एक जीएसटी काउंसिल है जो कि जब भी उनकी समस्याएं आती हैं तो जीएसटी काउंसिल उनको सुनता है। जीएसटी काउंसिल ने 250 से अधिक सर्कुलर्स इशू किए हैं, जहां भी ट्रेड को दिक्कत होती थी उसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो जीएसटी एक सर्टेनिटी, जो टैक्स सर्टेनिटी चाहिए निवेशक को,
1: जी
0: वो जीएसटी ने दिलाई है।
1: और इसके अलावा एक और छोटा सा सवाल है कि कई अर्थशास्त्री कहते थे कि जीएसटी ने छोटे कुटीर उद्योगों को खत्म कर दिया है।
0: ऐसा अब हमारे यहाँ देखिए, रजिस्ट्रेशन हमारे 67 लाख से उठ बढ़ के 1.7 करोड़ हो गए हैं।
1: जी
0: तो छोटे आदमी बहुत सारे जीएसटी में आए, जीएसटी ने एक फॉर्मलाइज कर दिया इकोनॉमी को, जो हमारी इकोनॉमी काफ़ी कैश बेस्ड थी, काफ़ी वो थी, बिखरी हुई थी, उसको हमने फॉर्मलाइज करके जीएसटी ने एक फॉर्मल चैनल पे ले आया है जीएसटी।
1: तो श्रोताओं, जीएसटी ने साबित कर दिया है कि जब एक देश एक सोच से चलता है तो परिवर्तन जरूर आता है। सुधार की ये यात्रा जारी है और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में वस्तु और सेवा कर नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गौरव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने सारे सवालों को इतने आसानी से दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नमस्कार।
1: तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिलाओं, ट्रांसजेंडरों के लिए ई ऑटो ड्राइविंग उत्थान और रोजगार योजना दुर्गा के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक ई ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ई ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।